0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 14 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का, तो आइए बढ़ते हैं समाचार की ओर।
2: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
3: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आईं। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज़्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू बर्मिनल सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल की कई दुकानों में चोरी करने गए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टियर गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और अभी कर्फ्यू हटा दिया गया है। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे लागू हुआ। देश के इन इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए और निर्धारित किया जाए कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान

0: में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कोलोव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया जहां इरुजीतो मां को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस सब पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है, लेकिन एक की सज़ा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज दूसरे दिन के लिए सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक सैन्य स्कूल उच्च शिक्षा संस्थाएं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट MITD मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर यानी नर्सरीज बंद रखे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया। आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आज मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा में निर्धारित समय पर की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वालों को निर्धारित समय पर परीक्षाएँ देनी होंगी। पियर्सन इंडेक्सल की परीक्षाएँ भी जारी रखी जा रही हैं। मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य ये कुछ बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल बंद। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी और जैसे कि हमने कहा SC और HSC की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें अब बिजनेस मॉरिशस की सिफारिशों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा अगले कुछ मिनटों में होने की उम्मीद है। वहीं आज शाम एक बार फिर कर्फ्यू लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय दोपहर बाद लगने वाले कैबिनेट की मीटिंग के दौरान की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आज की जा रही है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है। विदेश में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को फेफड़ों का कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी सफल रही। 71 साल के पॉप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी की गई। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मस्करिन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। मात्र सुबह ऊंचाइयों पर कुछ हल्के बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:40 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu. 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: बुधवार 14

अक्टूबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर वंदन स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को, आप सभी श्रोता जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रार्थना यही है, आशा यही है हमारी कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर। और आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम हिंदू महासभा की प्रस्तुति में लगभग 6:20 पर। और अभी आपने जैसे समाचारों में सुना कि देश में जो हालात है, सबसे आप सुरक्षित रहिए और कहीं ना कहीं जो है हमें शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और कर्फ्यू जो कल रात से लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। एससी और एचएससी की जो परीक्षाएं हैं वो निर्धारित समय पर होंगी और उसके अलावा जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो बंद रहेंगी। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है जहां पर माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। तो माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी जो है सब पर अपनी कृपा बनाए और सब शांति से और अच्छे से व्यतीत हो। और जितने भी छात्र परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षा देंगे, आप सभी को हार्दिक जो है शुभकामनाएं। आप परीक्षा में अच्छे से जो है मन लगाकर परीक्षा में भाग ले और अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसी कामना हम करेंगे। और अभी के लिए आइए सनातन धारा इस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं। सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी, आइए उनको सुनते हैं।

आलयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। हम सब लोग नवरात्र में हैं और मॉरिशस में दो नवरात्र विशेष करके मनाते हैं, एक चैत में और एक आश्विन में। चैत नवमी में हम सब लोग रामचरितमानस रामनवमी मनाते हैं और आश्विन नवमी को हम शारद्य नवमी कहते हैं। शारद्य नवमी देवी माँ का पूजन किया जाता है, शक्तिपीठ का पूजन करते हैं और हम सब लोग आज चतुर्थ दिवस है। आप सभी लोग जिस प्रकार से आप लोग हमेशा करते हैं, कलश से पवित्र होकर के या चित्र रख करके, जो भी विधान आप लोगों के लिए सरल रहता है, सरल से, सहज से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, जिस रूप से भी आप भगवान को, देवी माँ को ध्यान कर सकते हैं, वो अवश्य करना चाहिए। ऐसे नवमी कहा जाता है नौ रात्र को, नवमी नौ दिनों को कहा गया, नवरात्रि नौ रात्रों को कहा गया। लेकिन विशेष करके एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये सारा कुछ 15 दिनों का होता है। लेकिन

पूजा का रूप अलग अलग है, अलग अलग अर्थात है, लेकिन नवरात्रि कहा जाता है नवरात्रियों को। तो प्रश्न ये भी उठ जाता है, क्या सिर्फ नौ ही रात्रि को हम पूजा करेंगे? नवरात्रि के बाद जितने शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि तक जो तिथि है, क्या हम नहीं कर सकते? हम जरूर पूजा कर सकते हैं, इसीलिए

कार से पूजन करना चाहिए। आज के वक्तव्य में मैं आप सब लोगों को इन पर, आप सभी लोगों को इन चीज़ों पर समझाऊंगा। पहला दिन अगर आप देवी माँ का पूजन कर रहे हैं तो हमेशा दीप ज्योत जलाना चाहिए, और वो ज्योत जो है अखंड दीप जो जलाया जाएगा वो घी से। इसलिए देवी माँ का पूजन सबसे पहला अर्पण, पहला प्रथम दिवस घी अर्पण करना चाहिए। दूसरा दिन हम सब लोग घी इसलिए अर्पण करते हैं मन तन शरीर पवित्र हो और सब प्रकार के नकारात्मक दूर हो जाए। घी रोग से मुक्ति दिलाता है, इसलिए पहला दिन घी का दिया जलाएं, देवी माँ को घी अर्पण करें। दूसरा दिन फिर से अब जब हम पूजा करते हैं भगवान को, देवी माँ को शक्कर चढ़ाना चाहिए। शक्कर शहद का प्रसिद्ध है, मिठास का प्रसिद्ध है और संसार में मनोइच्छित फल प्राप्त करने का प्रतीक है। इसलिए द्वितीय दिवस में हम सब लोग देवी माँ को शक्कर चढ़ाते हैं। तीसरा दिन हम सभी लोग दूध से पूजा करते हैं, देवी माँ को दूध अर्पण करना चाहिए। चतुर्थ दिवस विशेष करके कहा गया कि अगर हम सब लोग मिठाई चढ़ाएंगे तो अति उत्तम फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब पांचवा दिन आता है तो सरस्वती पूजन किया जाता है। पांचवा दिन विशेष करके सरस्वती पूजन करने के लिए हम सब लोग केला चढ़ाते हैं। केला चढ़ाने से बुद्धि स्पष्ट एवं शुद्ध हो जाता है, और उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि केला खाने से क्या फल प्राप्त होता है। छठा दिन सुंदरता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य सुंदर बने, उसका रूप सुंदरता प्राप्त, इसीलिए तो देवी चरित्र में कहा गया रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयही। इसलिए सुंदरता को प्राप्त करने के लिए छठा दिन विशेष करके हम सब लोग मद अर्पण करते हैं। सातवां दिन देवी माँ का पूजन करते हैं तो उस समय सातवां दिन माँ काली का पूजन किया जाता है, और विशेष करके देवी माँ को गुड़ चन्ना आदि हम सब लोग चढ़ाते हैं। और विशेष करके सातवां दिन ये भी कहा जाता है गृह मध्य, अपने घर के मध्य भाग में अगर दिया जलाते हैं तो आपके घर में सातों देवी कुल देवी का अत्यंत रूप प्रसन्न होती है। इसीलिए उस दिन गुड़ और चना चढ़ाना चाहिए। आठवां दिन कहा गया जितने लोग व्रत नहीं रख सकते नौ दिनों तक, जितने लोग वृद्ध है बीमार है और उतना दिन व्रत संयम नहीं रख सकते तो आठवां दिन का पूजन विशेष महत्व बताया गया। कहा जाता है कि जितने वृद्ध लोग हैं अष्टमी के दिन अगर एक नारियल लेकर के देवी माँ को अर्पण करते हैं पूजन करते हैं तो मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। इसलिए नौ दिन का आकार अलग अलग रूप से बताया गया है। इसीलिए तो कहा गया देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वाम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। देवी माँ का एक नाम नहीं है, एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं, और अनेक रूप में अनेक प्रकार का प्रसाद, अनेक प्रकार का फूल, अनेक प्रकार का फल आदि अर्पण करते हैं। उसी देवी को माँ को अनेक नामों से हम सब लोग पुकारते हैं, अनेक रूपों से पुकारते हैं और अनेक प्रकार से उसका पूजन किया जाता है। नौवां दिन कहा जाता है जौ धान और लवा। नवमी के दिन इसीलिए हम सभी लोग उस दिन हम अपना व्रत को परिपूर्ण करते हैं तो जौ अर्पण करना चाहिए,
धान अर्पण करना चाहिए और लवा चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से नवमी के दिन हम सब लोग जो धान

0: 9 दिनों तक बोए हैं, उस दिन पूर्णावती से पहले उसे काटा जाता है, उसका तुलसी दल बनाया जाता है, सभी लोग उसको बांटते हैं और वो देवी माँ का पूजन करते हैं। दशमी के दिन जितने लोग अकाल मृत्यु अनेक प्रकार के कष्ट से दुखी है, तो उन लोगों के लिए दशमी विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा नकारात्मक जीवन को व्यतीत करते हैं, कोई भी कार्य उसका पूर्ण नहीं होता। हर प्रकार के कार्य को विजय प्राप्त करने के लिए कहा गया है विजया दशमी। दशमी तिथि को काला तिल से लेकर के देवी माँ को अर्पण करना चाहिए। एकादशी के दिन देवी माँ के लिए दही से दही अर्पण करना चाहिए, दही से पूजन करना चाहिए। और विशेष करके 12वां दिन कहा गया चूरा से पूजन करना चाहिए। अगर देवी माँ का 15 दिन देखते हैं तो 12वां दिन आ जाता है चूरा से लेकर के पूजन करते हैं। और 13वां दिन हम सब लोग देवी माँ का पूजन करेंगे तो रोट लड्डू चना आदि से पूजन करते हैं। 14वां दिन अगर हम सब लोग देवी माँ का पूजन कर रहे हैं तो 14वां दिन सत्वा से पूजन करना चाहिए। और 15वां दिन जो है पूर्णिमा का तिथि जब आ जाता है तो मनुष्य को खीर से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से देवी माँ का पूजन ये एक पक्ष का नियम है। एक पक्ष मतलब कि 15 दिनों का विशेष पूजन, जितने लोग वो नवमी में किसी प्रकार से 9 दिनों के दरमियान पूजा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, तो 9 दिनों के बाद भी जो हमारे सामने और 5 दिन रह जाता है तो उन 5-6 दिनों में आप सब लोग देवी माँ का विशेष पूजन कर सकते हैं और मनोइंचित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है और विशेष करके 9 रात्र जो होता है वो 9 दिनों का कहलाया जाता है। इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने घर में देवी माँ का पूजन करें, लक्ष्मी धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि विद्या आदि प्राप्त हो और सभी का कामना हो, सभी का मनोइंचित फल प्राप्त हो, आपका परिवार का कल्याण हो, इसलिए माँ जगदम्बा का पूजन अवश्य अपने घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सनातन धारा। इस कार्यक्रम को सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने, उनको धन्यवाद देते हैं। और अभी के लिए नवरात्रि के उपलक्ष्य में समय हुआ है हम बढ़े इस विशेष कार्यक्रम की ओर, हिंदू महासभा की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य गिरीश शर्मा जी, आइए उनको सुनते हैं और इसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर।

हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, ओम नमः जगदम्बिकाय। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से शारदीय नवरात्र के पावन उपलक्ष में आज वेनेसडे 14 अक्टूबर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम

सनातन धर्म की एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी देवी परंपरा के विषय में चर्चा करेंगे। सप्तमातृका अर्थात दिव्य मातृशक्तियों का वह समूह जिसे हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, परंपराओं में और विभिन्न क्षेत्रों की देवी उपासना में विशेष स्थान प्राप्त है। मातृका शब्द स्वयं बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण है। इसका मूल शब्द है मातृ अर्थात माँ। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती बल्कि वह पालन करती है, रक्षा करती है, मार्गदर्शन देती है और आवश्यकता पड़ने पर अपने संतान की रक्षा के लिए शक्ति का भी स्वरूप धारण करती है। इसलिए मातृकाओं को केवल युद्ध करने वाली देवियां समझना उचित नहीं है। उनके स्वरूप में दो प्रमुख पक्ष दिखाई देते हैं। एक और वे दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली दिव्य शक्तियां हैं और दूसरी ओर वे जगत की रक्षा, पालन और कल्याण करने वाली मातृशक्तियां हैं। सनातन धर्म में शक्ति के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, श्री हरि विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान महादेव संहार तथा परिवर्तन के अधिष्ठाता है। लेकिन इन देवताओं की कार्य शक्ति भी देवी शक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। इसी विचार को मातृकाओं के रूप में अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया गया है। सप्तमातृकाओं में सामान्यतः सात देवियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। इनके प्रत्येक रूप में यह किसी की न किसी देवता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जिस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी के रूप में, भगवान शिव की शक्ति माहेश्वरी के रूप में, ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य देवताओं की दिव्य शक्तियां भी मातृका रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इनके पौराणिक स्वरूप और उत्पत्ति की कथाओं को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। देवी महात्म्यम, जिसको हम देवी सप्तशती के नाम से भी जानते हैं, उसमें देवी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्ण मिलता है। देवी महात्म्यम में जब देवी और असुर शक्तियों के बीच भयंकर युद्ध होता है तब विभिन्न देवताओं की शक्तियां देवी की सहायक के रूप में प्रकट होती है। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश मिलता है। सभी शक्तियां मूलतः उसी एक परम आदि शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, अर्थात ब्रह्माणी अलग शक्ति दिखाई देते हैं, वैष्णवी अलग दिखाई देते हैं, महेश्वरी अलग दिखाई देती है, लेकिन उनकी मूल शक्ति एक ही है। यही कारण है कि देवी परंपरा में अनंततः सभी शक्तियां पुनः उसी परम देवी में समाहित हो जाती है। अब हम उस प्रसिद्ध कथा की ओर जाते हैं जिसमें रक्तबीज का प्रसंग आते हैं। रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर से रक्त की जो भी बूंद पृथ्वी पर गिरती उसी रक्त की बूंद से उसके समान एक नया असुर उत्पन्न हो जाता है। कल्पना कीजिए, युद्ध में यदि उसके शरीर का एक प्रहार होता है उसके ऊपर और रक्त की एक बूंद धरती पर गिरते हैं तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जितना उसका रक्त बहता है उतने ही असुर पैदा हो जाते हैं। देवी की सेना के लिए यह एक अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। तब देवी ने विभिन्न देवताओं की शक्तियों को अपने साथ प्रकट किया। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, महादेव की शक्ति महेश्वरी, भगवती वैष्णवी विष्णु जी की शक्ति, कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी और इसी प्रकार दिव्य शक्तियां प्रकट हुई और इन मातृकाओं ने युद्ध में देवी की सहायता की और रक्तबीज

0: जो जब संहार होते हैं उनका रक्तबीज की रक्त पृथ्वी पर गिरने को रोकने के लिए आवश्यक था, तब देवी ने इनके रक्त को धरती पर गिरने से बचा लिया, मतलब उनको मना कर दिया, और इस प्रकार रक्तबीज जो है इनका वध संभव हुआ। श्रोताओं, यह कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे जीवन की एक बहुत भारी रहस्य है। इसके भीतर एक बहुत आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। हमारे भीतर भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें जितना दबाने का प्रयास किया जाता है वह किसी दूसरे रूप में फिर हमारे सामने आ जाते हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार आदि जो है, यह विवेकपूर्ण समाप्त ना किया जाए तो वे बार बार जन्म लेते हैं। रक्तबीज की कथा हमें अपने शरीर की नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रति सजग करने का संदेश देती है, और यदि हम इन मातृकाओं को एक साथ देखें तो हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक चित्र दिखाई देता है। ब्रह्मानी यानी जो सृजन और ज्ञान की शक्ति है, माहेश्वरी जो परिवर्तन और अधर्म विनाश की शक्ति है, कौमारी साहस और युद्ध की शक्ति है, वैष्णवी पालन और संरक्षण की शक्ति है, वाराही पृथ्वी तथा जीवन की रक्षा की शक्ति, इंद्राणी तेज सामर्थ्य और दृढ़ता की शक्ति, चामुंडा आसुरी शक्तियों के विनाश की शक्ति है। इन सब को मिला करके तब देवी जो है इस जगत की रक्षा करती है, और यह शक्तियां जो है हमें सहायता देती है कि हम अपने अंदर जो आसुरी वृत्ति है उनको हम विवेकपूर्ण रूप से इनको हम समाप्त करने की प्रयास करें। और कहीं ना कहीं यह सब पौराणिक कथाएं हमको समय समय पे स्मरण कराते हैं कि ये जितने भी असुर या राक्षसों की चर्चा कथाओं में हुई है वह कोई पात्र नहीं अपितु हमारे अंदर बैठे हमारे वृत्तियां ही है। इसलिए नवरात्र के दिनों में केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन पूजा पाठ से जो शक्ति हमको प्राप्त होते हैं वह हमारे अंदर बैठे इन असुरों का वह संहार करें, ताकि हमारे अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दबाए रखें, वो कंट्रोल में रहे, जिससे हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी वाणी पवित्र हो जाते हैं। तो चलिए इन नवरात्रि के दिनों में हम माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करें कि वह कृपा करके हमारे अंदर जो असुर विराजमान है उनका संहार करें और हमें एक और अधिक बेहतर मनुष्य बनने की आशीर्वाद दें। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी, देश के कई इलाकों में कर हिंसक वारदातें पेश आईं। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया था। आज एक दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, सैन्य स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, टेक्निकल और MITD केंद्र, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डे केयर सेंटर बंद, लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं तथा PSN एडेक्सल की परीक्षाएं भी जारी। मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन बस सेवाएं आज शुरू हो रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस द्वारा जायजे के बाद पता चला है कि भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से अभी तक इस सेवाओं को शुरू नहीं किया जा सकेगा। विदेश की खबरों में पोपलियो 14 को हुआ कैंसर, वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में इसकी घोषणा।

0: बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आईं। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू करने में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू में विनर सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल में कई दुकानों में चोरी करने गए चार लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें दो नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टीयर गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में दो लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आज तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लेकर निर्धारित तक किया जा सके कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट ही इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Selon ce que la police peut rapporter, ça m'a dit que là, je finance et je finance pour mon trafic en la drogue. Je pense que je suis menacé pour mon action. Que la police peut prendre contre eux et ça, c'est une réaction. La police connaît qui sont ces gens-là et je peux prendre une mesure qui est bizarre. Selon nous, l'information, ces gens-là peuvent préparer eux pour refaire des zones encore.
0: सरकारी नेता ने सभी से देश में शांति बहाल करने और एकता बनाए रखने की भी मांग की।
1: Nous tous, nous sommes des images de violence inacceptable. Bonne station de la police qui peut brûler, bonne l'endroit saccagé, bonne véhicule de la police qui peut attaquer. Tout ça, pas capable d'accepter. C'est dans un moment pareil qu'il nous faisait montrer plus grande solidarité. La paix et l'harmonie dans le pays lui dépendent de chaque Mauricien, qu'il est jeune, qu'il est vieux, qu'il est politicien, qu'il est dans la police. Nous tous, ça y est sa responsabilité là. Bon Mauricien, il toujours exprime ça. Par votre vote ou par manifestation. Aujourd'hui, tout bon Mauricien peut condamner avec force un acte de vandalisme, de pillage que je finis de trouver. Surtout là, et nos enfants peuvent composer l'examen Cambridge. Et nous en période de prière dans plusieurs communautés.
0: ये कर्फ्यू देश के 5 शहर पोर्ट लुई, बोबा सेंट रोजिल, काथोबोन पाल्मा, वाक्वा फिनिक्स, क्यूपिप फॉरेस्ट साइड और मेबर्ग, व्यू ग्रांपो, शुमे घोनिये बेलोम्ब्र, कास्नोयाल रिविया नोर, बॉम्बू, पेटिट रिविया लागोलेट, फ्लैक, ऑर्जी, गुडलैंड्स, ग्रांड गोप तथा त्रियोले में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कॉलोव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया, जहां एलोजीटोमा को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है, लेकिन एक की सजा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री के बयान का एक अंश पेश है।
1: C'est aussi pas le Mauricien comme vous autres. Vous êtes la famille pareil comme vous autres. Vous êtes les enfants, vous êtes la proche. Oui, et nous haine la police qui fait commettre un acte impardonnable. Mais nous ne sommes pas capables de rendre toute la police Maurice responsable. La police elle est au service de la population. Elle n'est pas là pour faire des ordres, elle est là pour assurer la sécurité chaque Mauricien. Nous pour identifier un incendiaire, un démon qui peut agir contre l'intérêt de nos pays. Et je pour bizin répondre.

0: Jimoun qui ne fait un acte illégal pour subir des conséquences bien lourdes de cette action antipatriotique méritée.
1: सरकारी नेता ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों से बचने की मांग की जो डर और दहशत के साथ साथ देश में तनाव को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्रेस वालों से जानकारियों की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद ही प्रसारण करने की अपील की और कहा कि जानकारी देने वालों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना भी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: Qu'ils ont vérifié l'information qu'ils ont diffusée. La presse a un rôle important à jouer pour maintenir la paix. Mais liberté d'expression ne veut pas dire qu'on propose fausses nouvelles. Mais aussi lancer l'appel à tout le monde qui peut exprimer sa situation là, la radio ou bien les réseaux sociaux, qu'il est politique ou bien observateur. Moi, je veux dire qu'on mesure la gravité de ce propos et réfléchir bien aux bonnes conséquences. C'est vous de l'avoir plutôt pour propager la paix et la sérénité. Moi, tant que chacun exerce sa liberté d'expression avec discernement et dans le respect de la loi.
1: आज दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक स्कूल सैन स्कूल उच्च शिक्षा संस्थाएं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी MITD मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर यानी नर्सरीज बंद रखे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आज मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा में निर्धारित समय पर की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वालों को निर्धारित समय पर परीक्षाएं देनी होंगी। पियर्सन एरेक्सल की परीक्षाएं भी जारी रखी जा रही हैं। मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य ये हैं कुछ अहम बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण उपवाद है SC और HSC की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरी तरह ठप है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें अब बिजनेस मॉरिशस की सिफारिशों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा अगले कुछ मिनटों में होने की उम्मीद है। वहीं आज शाम एक बार फिर कर्फ्यू लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय दोपहर बाद तक लिया जाएगा, जहां दिन के 2:30 बजे एक कैबिनेट बैठक निर्धारित है। एक ऐसा गुस्सा जो लंबे समय से लोगों के मन में सुलग रहा था और आखिरकार अब फूट गया। समाजशास्त्री राज संतु के अनुसार मॉरिशस में मौजूदा घटनाएं आबादी के एक वर्ग की निराशा और हताशा को दर्शाती हैं। इस स्थिति के माध्यम से लोग अपने भीतर जमा असंतोष को जाहिर कर रहे हैं। सुनते हैं समाजशास्त्री राज संतु को, उनसे बात की हमारी सहयोगी शबनी जुजिया ने।
2: Inclus social développé avec beaucoup de facteurs pour vous dire une frustration du monde énorme. Vous êtes bleu sa frustration là, c'est en plusieurs façons de faire dit. Vous êtes cause de dommage avant du bien pays, comme on le dit, government property, public property, private enterprise property, tout ça là. Tout le temps vous êtes contrôlé ça, pas besoin de laisser à l'intention. Parce que tout le temps, nous dit, ou quand même une divergence, l'idée, une divergence dans la façon une société peut rouler, besoin de ce dialogue-là, besoin de la communication exactement, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, tout ça. Là, le mot peut trouver, on peut descendre, il peut aller carrément vers conflit, carrément vers violence. Besoin capable d'éviter ça, bonne violence, ça, tout ça. Bonne représentant dans le gouvernement, bonne représentant dans le secteur privé, bonne représentant des NGO. On a besoin, moi, expliquer comment dire qu'il est capable cause au public, capable de répondre à ce qui est l'attente.

0: एलोजी टमा की स्थिति को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह अच्छी खबर सुनाई कि उनकी हालत में सुधार है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटों में उन्हें होश आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उनके हाथ पैर सब सही सलामत हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश श्यामलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाई थी। इस टीम में ENT, न्यूरोसर्जन्स, एनेस्थीसिस्ट, नर्सेस आदि शामिल हैं। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: 7 घंटे तक ऑपरेशन चला एक जटिल सर्जरी, जिसमें मॉरिशस और भारत के 13 विशेषज्ञों की टीम ने भाग लिया। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल हुई एलोजी तुमा का जीतू अस्पताल में इलाज किया गया। भारत से विशेष रूप से आए 6 विशेषज्ञ अपने साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी लाए थे। उन्होंने 7 मॉरिशन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। डॉक्टर श्यामलाल कहते हैं, जीतू अस्पताल में एक खास उपकरण है, एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसी के जरिए सटीकता से देखा गया कि गोली कहाँ है। अंत में इसी उपकरण की मदद से उसे पकड़ कर बाहर निकाला गया। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खंडेलवाल कहते हैं, आज दवाइयां बंद की गई, मरीज के सभी परीक्षण उत्साहजनक हैं, वो होश में हैं और बहुत जल्द वेंटिलेटर भी हटा दिया जाएगा।
2: एंड वेरी सून आवर प्लान इज टू रिमूव द वेंटिलेटर एंड मेक हर मोबिलाइज।
1: ये सर्जरी मॉरिशस और भारत की चिकित्सा टीमों के बीच सहयोग का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। ये ऑपरेशन 100% सफल रहा। सभी डॉक्टरों और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें भाग लिया धन्यवाद देते हैं। एलोजी तुमा के परिवार के लिए ये खबर उम्मीद लेकर आई है। पिछले कई दिनों से वे चिंता और बेचैनी के दौर से गुजर रहे थे। उसमें सुधार आया है, उसने हमें देखा और हमें पहचाना भी, अपनी माँ का हाथ भी पकड़ा। हमारे लिए ये राहत की बात है। जोनाथन तुमा कहते हैं, अब मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से देख सकूंगा। हमने उसे ठीक करने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एलोजी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी सेहत में सुधार का आकलन करने और आगे के इलाज की दिशा तय करने के लिए अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे।
0: CWA के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। CWA के वेबसाइट पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। सभी उपनाम के पहले अक्षर की परवाह किए बिना A से Z तक किसी भी दिन आवेदन जमा कर सकते हैं। ICT मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि अनावश्यक आवाजाही और कार्यालयों के काउंटर पर लंबे समय तक आपको इंतजार ना करना पड़े। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है। मां कुष्मांडा की पूजा सुख समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।

0: माँ दुर्गा की नौ स्वरूपों में चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है।
1: तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और करुणामयी है। उनकी आठ भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके आठ

हाथों के कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। सिंह पर सवार माँ अपने भक्तों को साहस, शक्ति, आरोग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई आशाओं का संचार होता है। वे अपने भक्तों के दुखों को दूर करके उनके जीवन में प्रकाश और खुशहाली लाने वाली देवी हैं।

0: उनकी कृपा से मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्त माँ कुष्मांडा के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता के अंधकार को दूर कर ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं।
1: विदेश की खबरों में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को फेफड़ों के कैंसर यानी लंग का कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 साल के पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, तड़के सुबह और रात तक ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सुबह सूर्योदय 5:40 पर, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मकनामा लेन पेची त्रिविया में इक्यानवे साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हवंती राम सिंह, श्रीमती हवंती राम सिंह पैदाशी नाम रामेसर और जो सुमित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्रदेव राम सिंह के मकान मकनामा लेन पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शकाल लेन रोसबेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण लाल बिहारी जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10:30 बजे उनके मकान शकाल लेन रोसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। ब्रांच रोड लालमाटी में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेणुका ने ओ पैदाशी नाम गोपल और जो रेणू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके पति विनय ने ओ के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट डे फ्लैक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रंबावती सुकन जो लीलू

के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान ला पोर्टोविडांस पोस्टिफ्लैक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:11 AM। काहोला लियान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाक्वा में, काहोला लियान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाक्वा में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती बलुराम, श्रीमती धनवंती बलुराम पैदाशी नाम लड़का और जो शीला साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके मकान काहोला लियान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:01 PM। शिवाजी लेन मेल हाउस में, शिवाजी लेन मेल हाउस में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्र सेन नाथिया जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10:30 बजे उनकी माँ रानू नाथिया के मकान शिवाजी लेन मेल हाउस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:10 AM। कौलाबू मोताईलोंग में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती राम प्रसाद पैदाशी नाम महावीर सिंह और जो चिफिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे आतिश राम प्रसाद के मकान कौलाबू मोताईलोंग से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए खफगया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:09 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। खेल समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग हो या चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों में पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है, दोनों में नाजुक है, खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। पिछले 5 मैचों में एक भी जीत नहीं। इस बार एथलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। मैच के पहले मिनट में ही पाब्लो बारियोस का गोल, फिर सेकंड हाफ में योगो को मिला रेड कार्ड। 5 मिनट बाद लुकमान ने एथलेटिको मैड्रिड का दूसरा गोल स्कोर किया। दूसरी ओर आर्सेनल आराम से जीत पाया। द गनर्स 3-0 से लिल को लिल गए। तीनों गोल सेकंड हाफ में टिम्बर, एजे और साका के जरिए। अन्य नतीजे, लांस 0 स्पोर्टिंग 2, साबा 2 स्लाविया प्राग 0, गलातासराय 1 बार्सिलोना 4, कांसेलो, लोपेस, गोर्डन और अदेयेमी का एक एक गोल। इंटर मिलान की हार हुई, क्लब ब्रुज ने उसे 4-3 से हराया। और लाइपज़िग 1 पीएसवी आइंडहोवन 0, विकिंग 3 बायर्न म्यूनिख 3, इसमें हैरी केन का डबल रहा, जाज का एक गोल। और विलारियल ने नापोली को 3-1 से हराया। अभी के लिए बार्सिलोना, स्पोर्टिंग और आर्सेनल के पास 2 मैचों के बाद 6 अंक हैं। आज फेयेनूर्ड वर्सेस कोमो, लास्क जो ऑस्ट्रिया की टीम है उसका मुकाबला लिवरपूल से है, ये खेला जाएगा 9:45 Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Betis, FC Porto, AS Roma, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, AK Athens और Slovan Stuttgart, ये 11 बजे के मैच होंगे। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कई मैच खेले गए। ब्रिस्टल 0 ब्लैकबर्न 1, बर्नले और चार्ल्टन के बीच मैच ड्रॉ 2-2, कार्डिफ ने वाटफोर्ड को 5-1 से हराया। मिलवॉल 0 स्वानसी 1, वुल्व्स 1 बोल्टन 3, रेक्साम 1 वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 2, बर्मिंगहम 4 प्रेस्टन 0, स्टोक 2 मिडल्सब्रो 3, ये लीग चैंपियनशिप के नतीजे रहे। टेनिस एटीपी शंघाई मास्टर्स में राउंड ऑफ 16 में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने बुब्लिच को 7-6, 4-6, 7-6 से हराया। अन्य मैचों में डेमिनो रिया फोकिना जीत पाए। आज मेदवेदेव का मुकाबला

से हैं पोल वर्सेस बर्ग्स, रूड वर्सेस ओगर अलियासिमे और वन डे जांच्लब खेलेगा जोडा के खिलाफ। क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। 5 मैचों के इस T20 सीरीज में भारतीय टीम अभी 2-1 से आगे है। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार, एथलेटिको मैड्रिड ने उसे 2-0 से हराया, जबकि आर्सेनल की आसान जीत 3-0 से। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 14 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7 बजने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से 2 विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीईबी मालेअब क्यूपिप के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। मालेअब क्यूपिप के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक क्लेमो शारो, मालेअब क्यूपिप और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 14 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मेबक के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। मेबक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रूलाशो, रूसुफ्लेखल, रूबुशो, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 14 अक्टूबर को सुबह के साढ़े आठ से दोपहर के तीन बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी 2 विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: बुधवार 14 अक्टूबर घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:02। रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना, इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार, स्वीकार करें सुप्रभात। नए दिन की शुरुआत आशा करते हैं अच्छे से हुई होगी और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से व्यतीत हो, ऐसी कामना हम करते हैं। जिन भी छात्रों की परीक्षाएँ हैं, परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं, आप सभी को शुभकामनाएँ हमारी ओर से। और हालातों के चलते आज स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन जो भी निर्धारित परीक्षाएं हैं वो समय अनुसार ही होंगी। और आप सभी अपना ख्याल रखिए, जहां रहे सुरक्षित रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी लोग अपने कामकाज की ओर जा रहे हैं, दिन का आरंभ कर रहे हैं, आप लोगों को आज के दिन में ढेर सारी सफलता मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ जो है आज के इस सुबह का नजराना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए चिंतन की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: अंधेरे को हटाने में

समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए।

जी हाँ, सवेरा हो चुका है, अंधेरा मिट चुका है और हम यही प्रार्थना करेंगे कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई अंधकार है वो भी मिट जाए, ज्ञान का प्रकाश फैल जाए और कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा करें जिससे सबका भला ही हो, कहीं पर भी किसी का नुकसान न हो या कभी हम कुछ ऐसा कार्य न करें, कोई ऐसा कर्म न करें जिससे किसी को हानि पहुँचे। क्योंकि हम जो है एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए बने हैं, एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए बने हैं और यही सारी भावनाएं हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। सवेरे के 7:10 यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए, अब बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। सुबह का नजराना ये प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ही देर में यानी कि लगभग 7:40 पर हम आपकी डेडिकेशंस शामिल करेंगे जिसके लिए आपके फ़ोन कॉल और मैसेजेस हमें सवेरे से ही मिल रहे हैं। 8:00 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, खेल खेले हम। आठ बजकर 50 पर आप किरण जानकी से सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 9:00 आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। 10:00 होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11:00 होगा समाचार, उसके बाद आप सैदा की पेशकश में सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12:00 आप वंदना की प्रस्तुति में सुन सकेंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। दोपहर के 12:30 मराठी भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेगी प्रीति। 1:00 आप तामिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे आरसी द्वारा। 1:45 आप गुजराती प्रोग्राम सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3:00 के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपहर के 4:00 मराठी भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे शिरीष द्वारा। 5:00 फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम। 5:15 से अंताक्षरी ये कार्यक्रम चलेगा जिसे प्रस्तुत करेंगे रोशन और उषा। 6:00 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 आप हाक्का भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे डेविड द्वारा। 7:00 तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी पुवना। 7:50 पर नितिन बापू से आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। रात के 8:10 पर आप रोशनी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम। रात के 8:40 पर आप अविनाश की पेशकश में सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब्द। रात के 9:00 नवरात्रि के उपलक्ष में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम प्रताप की प्रस्तुति में और फिर रात के 10 से 11:00 के बीच प्रताप प्रस्तुत करेंगे भोजपुरी तड़काई प्रोग्राम। और यहाँ पर

सुनहरे पल इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे नीलमणि की प्रस्तुति में और रात के 12 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की।

0: यकीनन जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, जैसा हमारा बर्ताव होता है, जैसा हमारा व्यवहार होता है, लोगों को वही याद रहता है। किसके पास कितनी धन है, कितनी दौलत है, कितनी शौहरत है, लोग शायद समय के साथ ये भूल जाते हैं, लेकिन हमने सामने वाले के साथ कैसा बर्ताव किया, उनसे कैसी बातें की, उनको कितना समझा, उनकी भावनाओं का कितना सम्मान किया और उनका जो है कितना सम्मान हमने बनाए रखा, ये सभी को याद रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि हमारा आचरण बहुत ही मायने रखता है। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ कहते हैं तो किस भाव से कह रहे हैं, हमारी वाणी कैसी है, हमारी बोली कैसी है, यह हमारे चरित्र को दर्शाती है। और कहीं ना कहीं समाज की बात करें, देश की बात करें, घर परिवार की बात करें, एक व्यक्ति को सम्मान ज़्यादातर इसी के लिए मिलता है, उसके व्यवहार के चलते, उसकी वाणी के चलते, उसकी बोली के चलते, और हम इसी से जाने जाते हैं।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

जी हाँ, हर व्यक्ति के कई सपने होते हैं, कई ख्वाब होते हैं, कई अरमा होते हैं, और इन अरमा को पूरा करने की जो कोशिश होती है वो भी उसी व्यक्ति की होती है। क्योंकि जब भी हम कोई सपना देखते हैं उसे पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि सपना आज देखा और कल पूरा हो गया। अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, और जिस भी चीज़ को हम परिश्रम से प्राप्त करते हैं उसकी कद्र भी बहुत करनी चाहिए। क्योंकि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके सपने साकार होते हैं। 7:25 हो रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, और चौथे दिन जो है माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। तो माता रानी की कृपा आप सभी पर, सभी भक्तों पर हमेशा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं।

चलिए, सवेरे से आपके ढेर सारे फ़ोन कॉल्स, आपकी शुभकामनाएं आ रही है और यहाँ पर नवरात्रि की भी मंगल कामनाएं। बहुत सारे श्रोता जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भक्ति भाव से अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। आपके लिए जो पूजा है, जो प्रार्थनाएं हैं, जो भी व्रत आप धारण कर रही है वो संपन्न हो, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले। और जितनी माताएँ, जितनी बहनें सवेरे से हमें कॉल कर रही हैं, आपके लिए भी आज का दिन शुभ हो, ऐसी कामना हम करते हैं।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: Ou toujours pas encore faire au Individual Income Tax Return 2026, ou connaît, aurait seulement deux jours pour faire les, pas tarder. Allo site web de la MRE, www.mre.mu. Clique le e-filing season 2026 et suive ban instruction. Si vous besoin d'aide, prenez rendez-vous le e-appointment, un officier de la MRE, pour aide ou remplir ou return à travers un WhatsApp video call. Après qu'il vous finit soumettre ou return, ou capable de participer dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remplir un de ces 23 prix là. Premier prix, 25 000 roupies. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies. Faire vite, remplis au return avant le 15 octobre. Passez ce délai ou risquez une pénalité et l'intérêt.
0: 819 kHz, yeh hai Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: चलिए रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं और डेडिकेशंस का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता है. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स के लिए जो सवेरे से ही हमें मिल रहे हैं 4028085 और आपके मैसेजेस 5251700 पर. बहुत सारे आपके फ़ोन कॉल्स जो थे उसमें बहुत से लोगों ने यही कहा कि बस चारों ओर शांति बनी रहे, लोगों में आपसी समझ हो और हर कोई एक दूसरे की सहायता करे, मदद करे, एक दूसरे का साथ दे, कहीं पर भी कोई किसी का नुकसान न करे और हानि न पहुंचाए. बिल्कुल हर कोई चाहता है कि एक ऐसे वातावरण में जिए जहां पर शांति हो और हमारी हर एक व्यक्ति की ये जो है हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी ओर से प्रयास करे कि अपने वातावरण को किस तरह से अच्छा बनाए रखने में अपना योगदान दे. चलिए अभी के लिए यहाँ पर इस समय शिवरानी जी ग्रोम्बुआ से हमारे साथ जुड़ी हुई है. अगला गाना शिवरानी जी आपके नाम हम करते हैं. आलिया बाई हमारा साथ दे रही है, मामा जया को याद कर रही है और साथ में हमारे प्रोग्राम में भी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद. शेला जी हमारा साथ दे रही है, नवरात्रि की मंगल कामनाएं दे रही है सभी हमारे श्रोताओं को. गाना जाएगा उनके पति साजन के नाम, बेटा विकास है, सभी बेचान परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. काफ़ी मैसेजेस भी हमें मिले हैं. शुभ सवेरा यहाँ पर आपको भी माला जी आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दुर्गा नवमी की मंगल कामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी. और चलिए यहाँ पर इस समय अनीता जी भी मौदालबिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है. जय माता जी, जय माता दी सबको कह रही है और कह रही है कि माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें. और गाना जाएगा अनीता, करुणा, अमृता, कविता और सभी दोस्तों के लिए. यहाँ पर किशन जी ने हमें मैसेज तो नहीं एक लिंक भेजा है, मौका मिलेगा तो इस लिंक को हम ज़रूर ओपन करके देखेंगे कि क्या है ये. ऐसे आपने हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इंदिरा लॉटन जी साथ दे रही है और आपका भी मैसेज, आपने क्या लिखा है, एक गीत लंदन, मतलब कि शायद लंदन में आपके जो परिवार रहते हैं उनके नाम आप गाना डेडिकेट करना चाहती है. तो चलिए बिल्कुल अगला गाना उनके नाम होगा और डेडिकेशंस का सिलसिला जारी है और आप अपने मैसेजेस, अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं.

यहाँ दिन प्यार के आएंगे सजन, या हर दिन प्यार से भरा होना चाहिए, हर दिन पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए, हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से हो, तो कहते हैं कि हर दिन अपने आप में बहुत अच्छा बीतता है। तो चलिए यहाँ पर नए दिन की मंगल कामनाएं एक बार फिर से आप सभी को। आज बेटा उमेश अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सुमिला हीरामन जी की ओर से, मामा सुमिला हीरामन जी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटे उमेश को, पापा गुलाब चंद की ओर से। उमेश जी आपको शुभकामनाएँ आई है आपकी पत्नी आशना की ओर से, बच्चे हैं जोश जेसन और साथ में है सभी हीरामन परिवार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर लीला जी बौशेरी से हमारा साथ दे रही है, सभी को जय माता दी कह रही है। और यहाँ पर शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई है, कह रही है कि उनके साथ साथ उनके पति भी है, दोनों प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, धन्यवाद। गाना जाएगा अनुषा श्रवीना के नाम, सभी पूरन परिवार के नाम, और कह रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम जो परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उनको बेस्ट विशेस आपकी ओर से। बिल्कुल। और कटरबन से स्वस्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्ति जी आपके भी मैसेज के लिए। और ये तराना उन सभी के नाम जो अपना बर्थडे मना रहे हैं या कोई ख़ास मौका सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल हैं।

जी हाँ, चारों ओर खुशियाँ हो, चारों ओर सुख हो, चारों ओर शांति हो, चारों ओर अमन हो और सभी के बीच में भाईचारे और अपनेपन की भावना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का साथ देकर ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए, इस समय आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जय माता दी। आज जितने भी स्टूडेंट्स परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएँ। ये मैसेज आया है बिहारी परिवार की ओर से, दागोचिया से। सुनीता जी हमारा साथ दे रही है और बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपके इस मैसेज के लिए। फातिमा जी निवग्रोव से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी को जो है आज के दिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। सूरज शर्मा जी ट्रियोले से हमें सुन रहे हैं, लिखा है ब्यूटीफुल शो, थैंक यू वेरी मच सूरज जी। और जितने भी सुनने वाले हमारे प्रोग्रामों से जुड़े रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। गाना जाएगा सुनीता जी आपके नाम, ग्रांगुप से हमारा साथ दे रही हैं। आफिस जी लावेनिया से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और इस गीत के साथ शांति और अमन की कामना करते हुए, भाईचारे की कामना करते हुए इस गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में, ऐसे ही जुड़े रहिए आप रेडियो मॉरिशस पर।

घड़ी मिला ला फजर के 8 बजल बा। सबको के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुन जा। सख्त निगरानी में शुरू भेल रात जहां शांति भंग होय के जस्ती देरी नहीं लगल। काल रात देश के कई गो इलाका में हिंसा के कई गो घटना पेश आल। कर्फ्यू के बावजूद कई जना सीमा पर ही उतर गयलन सा। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाए में जस्ती आसानी भल। बखेर ई बारी हिंसा जुनबा ओ केंद्र के छोड़ के पश्चिम इलाका के छोड़ के पूरब अरे दक्षिण बगल वो फैल गल। उत्तरी इलाका गुडलैंड सवो में देर रात लेक अधिकारी लोग इस प्रदर्शन के काबू में करे के कोशिश में लगल रहलन सा। बॉम्बू सेंट ख्वा गुडलैंड मेबर्ग बेजुतोंबू बॉम्बू में विनर्स सुपरमार्केट में लूट होल। कास्कावेल मॉल के कई गो दुकान में चोरी करल गल। 4 जना के गिरफ्तार करल गल जिनमें 2 गो नाबालिग बाटे। मेबर्ग में एगो कारी में आग लगा देवल गल। सेंट ख्वा बेजुतोंबू में संयम बनाए खातिर पुलिस के परल तिया गैस के इस्तेमाल करेगी। काथोबोन में 2 जना के मोलोटोव कॉकटेल संगे पकड़ल गल। याद रख कि कर्फ्यू के उल्लंघन करे होला के 5 बरिस कैद की सजा आरी 50,000 रुपया के जुर्माना चुका के पड़ी। देश के 15 इलाका में आज फजर के 4 बजे कर्फ्यू हटा देवल गल। काल रात 8:00 पर ही लागू हो रहल। देश के कई गो इलाका में हिंसा के बाद ई फैसला लेवल गल। आज सांझ के 2:30 2:30 पर ही कैबिनेट के आपात बैठक लगावल जाए जिमे स्थिति के जायजा लेवल जा सकी आरी कौन कदम उठाए के बाटे ई परी विचार करल जाए के सकी। काल देश के संबोधित अमन बयान में प्रधानमंत्री बोलन की जानकारी के मुताबिक नफरत की भावना संगे एगो विशेष जुन गुट बाटे उ ई घटना खातिर जिम्मेदार बाटे। सरकारी नेता सबको से शांति आरी एकता बनाए के मांग करलन। मेट्रो सेवा ठप बाटे, स्कूल बंद बाटे, SHSE के परीक्षा जारी। बुध के लेके अजाने योग्य ई कुछ बात। शिक्षा क्षेत्र के बात में त आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर लेक सब स्कूल बंद बाटे। विश्वविद्यालय के पढ़ाई ऑनलाइन होवत बाटे। हालांकि एगो महत्वपूर्ण अपवाद बाटे, SCRE HSE के परीक्षा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार करल जात बा। परिवहन सेवा के बात कई लाजत बस सामान्य रूप से चलत बाटे। बखेर मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरा तरह से रुक गल ह। भारी नुकसान के कारण आज कोनो ट्राम नहीं चलत बाटे। आरी पूरा हफ्ता लेक मेट्रो सेवा के बंद रहे के संभावनाओं बाटे। निजी क्षेत्र में बिजनेस मॉरिशस बगल से जारी कम्युनिके में सब गतिविधि सामान्य रूप से शुरू करे की सिफारिश देवल गल ह। काल रात के हिंसा के बावजूद कर्फ्यू हटावल जाएला के बाद बस सेवा शुरू होल, सीमा सफा रहल जोन कारण से ही फैसला लेवल गल। बिजनेस मॉरिशस सब कंपनी के जिम्मेदार लोग से मांग करत बाटे कि हालात के ध्यान में रख के काम के योजना तैयार करे के चाही। काहे कि स्कूल आरी नर्सरीज बंद बाटे, स्थिति पर करीब से नजर रखल जात बाटे। जरूरत पड़ला पर ही नवा जानकारी देवल जाए।

CWA के कार्यालय के बाहर लंबा कतार के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम खातिर ऑनलाइन आवेदन करल जात बा। CWA के वेबसाइट पर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लैंडी सांझ के शुरू भेल। सब उपनाम के पहला अक्षर के परिवार लोग यानी ए से जेड लेक सब कोई सक्यन से अपन आवेदन जमा करे। नवरात्रि के चौथा दिन आज माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा के आराधना करल जात बाटे। मान्यता बाटे कि माँ कुष्मांडा अपन दिव्य मुस्कान से सृष्टि के रचना कर ले रहलन। उनकर तेजस्वी आभा पूरा ब्रह्मांड के प्रकाश देवेला। माँ कुष्मांडा के पूजा सुख समृद्धि आरोग्य आणि सकारात्मक ऊर्जा खातिर करल जाला। विदेश में वाटिकान के ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 के लंग कैंसर भल बाटे। हालांकि उनकर दहिया फेफड़ा के नीचे होला हिस्सा के निकाले खातिर सर्जरी करल गल। 71 बरिस के पोप के मंगल के रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट ले सर्जरी करल गल। वाटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रहल। ई रहल संक्षिप्त समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते। News on NBC Play and NBC.mu. शोक समाचार सुना जा। मकनामा लेन पे चित्रिविया में 91 बरिस के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री हवंती राम सिंह पैदाशी नामरा में सर आज सुमित नाम से जस्टी जानल रहा तलन गुजर कल हवन माटी। दिन के 10 बजे उनकर बेटा चंद्रदेव राम सिंह के घरे मकनामा लेन पे चित्रिविया से उठा के केरा कर्म खातिर सहजोज के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शाका लेन रुसबेल में 60 बरिस के 60 के श्री नारायण लाल बिहारी जे मनोज नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी। 10 बज के आधा परी उनकर घरे शाकाले इन रुसबेल से उठा के केरा करम खातिर मागे जानी रुसबेल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टू डेट 10:30 AM। ब्रांच रोड लाल माटी में 53 बरिस के सकंतवासों के श्रीमती रेणुका नेऊ पैदाशी नाम गोपुल आज रेणु नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी। 1 बजे उनकर पति विनय नेओ के घरे ब्रांच रोड लाल माटी से उठा के केरा करम खातिर गांधी रोड लाल माटी के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 1 PM। लापोत प्रोविडेंस पुस्त फ्लाक में 85 बरिस के 85 के श्रीमती रंभावती सुकन जे लीलो नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माटी। 11 बजे उनकर घरे लापोट प्रोविडेंस पुस्त फ्लाक से उठा के केरा करम खातिर लावो छ के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। काहुलालियान सुल्फेनो नंबर 3 वाकवा में 75 बरिस के 67 कैजों के श्रीमती धनवंती बालूराम पैराशी नाम लड़का आज शीला साबित नाम से जस्सी ढानल जाथलन गुजर गल हवन माटी। दिन के 1 बजे उनकर घरे काहुलालियान सुल्फेनो नंबर 3 वाकवा से उठा कर क्रिया करम खातिर फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 1 PM। शिवाजी लेन मेलहोज में 60 बरिस के 60 के श्री चंद्रसेन नातिया जे गौसो नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी। 10 बज के आधा परी उनकर माँ रानू नाचिया के घरे शिवाजी लेन मेलहोज से उठा के केरा करम खातिर मोताई ब्लॉन्च के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एन 10:30 AM। कौलाबू मोताई लोग में 73 बरिस के 67 के श्रीमती कृष्णावती रामप्रसाद पैदाशी नाम महावीर सिंह आज चिफिया नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी। काल फजर के 9 बज के आधा पर ही उनकर बेटा आतिश रामप्रसाद के घरे कौलाबू मुतायलों से उठा के केरा करम खातिर खैफ के अकेश मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबली सब परिवार संगे हमने की सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: चलिए सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा। सवेरे के 8:16 यहाँ पर हो चुके हैं और अब बारी है एक छोटे से क्विज की जो हर बुधवार को होता है। और चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। कल 13 अक्टूबर को बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर गायक का जन्मदिन था, जन्मदिन नहीं था, उनकी पुण्यतिथि थी, तो आपको हमें उनका नाम बताना है। कल हमारे रेडियो पर उन पर काफ़ी विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए, उनके विशेष गाने भी आपके लिए चलाए गए। तो कल 13 अक्टूबर 1987 को ये चल बसे थे, उनका निधन हुआ था और उनको ट्रिब्यूट देते हुए कल बहुत सारे विशेष प्रोग्राम आपने सुने भी होंगे, गाने भी सुने होंगे, तो आप उनका नाम हमें बताएं 4028085 पर। ये एक ऐसे गायक रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी जो है इनके गाए हुए गाने हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और गायकी के साथ साथ इन्होंने एक्टिंग भी की है। जी हाँ, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
1: अरे नमस्कार,
0: आपका स्वागत है जी। कौन है?
1: मैं शांति बोल रही हूँ।
0: कैसी है शांति जी?
1: ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है जी। क्या है जवाब?
1: किशोर कुमार।
0: अच्छा चलिए, किशोर दा का कोई गाना आपको पसंद है, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में?
1: फिल्म परोसन का गाना।
0: ओके, आपको बहुत पसंद है। हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद शांति जी।
1: थैंक यू,
0: आपने भाग लिया इसके लिए धन्यवाद, साथ में जुड़े रहिए जी। नमस्कार। चलिए कल बॉलीवुड के एक पॉपुलर गायक की जो है पुण्यतिथि थी, आपको हमें उनका नाम बताना है। हेलो नमस्कार।
2: हेलो
0: नमस्ते।
2: नमस्ते सुमित जी।
0: नमस्ते भाई विजय, कैसे हैं?
2: नमस्ते, जय माता जी।
0: जय माता दी आपको भी।
2: ठीक बात अपना?
0: सब ठीक है, सब ठीक है। शायद ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर है और हवा काफी तेज है तो आपकी आवाज को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी,
2: जवाब है किशोर कुमार।
0: अच्छा, कुछ जोड़ना चाहेंगे किशोर कुमार जी के बारे में?
2: दुनिया जब तक रहेगा उसका नाम रहेगा, गायक फिर नहीं मिलेगा।
0: हाँ जी, आपने सही कहा।
2: बहुत बढ़िया गायक, बहुत बढ़िया गायक। धन्यवाद आपको, शुभ दिन।
0: आपको भी धन्यवाद और शुभ दिन कहेंगे हम। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
3: हेलो नमस्ते जी।
0: कौन बोल रही है जी?
3: इंदिरा राउत।
0: कैसी है इंदिरा जी, और क्या है जवाब आपके पास?
3: वही है किशोरदा।
0: ओके, कुछ कहना चाहेंगी किशोरदा के बारे में?
3: बात ये है कि वो उसके भाई के लिए, उसके लोग उनको खुद पर उनको परिवार के लिए अजीत अजीत कुमार जो है ये उन लोगों के

0: बारे में उसके फैमिली के लिए।
1: अच्छा जी, धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।
0: नमस्ते, नमस्ते
1: जी। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस के जरिए भी जवाब हमें मिल रहे हैं। दीपा जी कौतरेल से हमारे साथ जुड़ी है, कहती है कि आंसर है किशोर कुमार। चलिए धन्यवाद। सिमला जी का जवाब आया है थ्रियोले से, लिखती है उनका भी जवाब है किशोर कुमार। यहाँ पर एक और जो है जवाब हमें मिला है, लेकिन आपका आपने अपना नाम ओके, फातिमा जी निवग्रोव से लिखती है किशोर कुमार है का भी जवाब। ऑल राइट, धन्यवाद। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है अनीता जी की ओर से, फ्लिक ऑफ फ्लक से लिखती है जवाब है किशोर कुमार। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और यहाँ पर ओके, आपने भी जवाब दिया है, आप है आपका नाम। कभी कभार आप मैसेज करते तो आप अपना नाम लिख देंगे हर एक मैसेज में, तो हमें पता चलता है कौन है। तो देवी जी, यस, आभास कुमार गांगुली, ये उनका असली नाम था, लेकिन हिंदी फिल्मी जगत में इन्हें किशोर कुमार या किशोरदा के नाम से जाना जाता था। चले एक दो और फ़ोन कॉल्स हम लेते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्ते बहना, मैं इंदिरा मेबैक से।
1: कैसी है इंदिरा जी?
2: सबसे पहले मैं आपको दुर्गा माँ की शुभकामनाएं पेश करती हूँ आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से।
1: बहुत धन्यवाद, नवरात्रि की मंगल कामनाएं आपको भी।
2: हाँ
1: जी, कौन, अपना नाम फिर से बताएं।
2: इंदिरा मेबैक।
1: इंदिरा जी, और बताइए क्या है जवाब इंदिरा जी?
2: किशोर कुमार, मैं गाना गा सकती हूँ जिस एक लाइन?
1: दो लाइन गा दीजिए, चलेगा।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी।
2: लाजवाब किशोर कुमार का वॉइस, तो क्या बोलेंगे, ये तो गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने इंदिरा जी, शुभ दिन आपको, नमस्कार।
2: शुभ दिन।
1: ओके, यहाँ पर एक और श्रोता है, हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, कौन बोल रहे हैं
3: जी? नमस्कार, जैसे आली।
1: आली कैसे हैं?
3: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
1: बिल्कुल ठीक है, और क्या है जवाब आली जी?
3: बेशक किशोर कुमार।
1: कुछ जोड़ना चाहेंगे किशोरदा के बारे में?
3: नहीं, मैं आपकी कसम में
1: जी,
3: जिंदगी के सफर में जो गुजर जाती है वो फिर नहीं आती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए उनके गाने ऐसे थे कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं, है ना
3: जी।
1: चलिए धन्यवाद, शुभ दिन आपको, नमस्कार। एक और फोन कॉल लेते हैं, हेलो नमस्कार। हेलो,
4: हेलो नमस्कार
1: जी। वसंती जी कैसी हैं?
4: मैं ठीक हूँ।
1: बिल्कुल ठीक है, और बताइए क्या है जवाब आपका?
4: जी किशोरदा।
1: ओके, कुछ जोड़ना चाहेंगे किशोरदा के बारे में?
4: किशोरदा ने लता जी से संग के संग बहुत गाना गाई है
1: जी। किशोरदा ने ज्यादातर ड्यूएट गाए हैं और उनके ज्यादातर गाने पॉपुलर और हिट रहे हैं।
4: एक गान गा दूं?
1: अच्छा बिल्कुल।
4: फिल्म है ज्वेल थीफ।
1: ओके,
4: आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निया बना के चले।
1: बहुत धन्यवाद वसंती जी, शुभ दिन, ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा, नमस्कार
4: जी। सुमित जी
1: शुभ दिन। और चलिए यहाँ पर एक और जवाब हमें मिला है शोभा जी की ओर से, वाकवा से साथ दे रही है, जवाब है किशोर कुमार बिल्कुल। और यहाँ पर माला जी की ओर से जवाब आया है किशोर कुमार, उनका गाना गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर आपको बहुत पसंद है। ऑलराइट, चलिए एक और श्रोता से मिलते हैं, हेलो नमस्ते।
5: हेलो नमस्ते बहन
1: जी, नमस्कार, जैसी गुलाम जी कैसे हैं?
5: अच्छा, पहचान लेना।
1: हाँ हाँ, काफी दिनों बाद आपकी आवाज आई।
5: हाँ।
1: अच्छा बताइए,
5: किशोर कुमार तो महान है ये बहन
1: जी।
5: हमें वो गीत सुना सको कर।

0: तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है ना बहन?
1: बहुत धन्यवाद जय श्री गुलाम जी, आपको शुभ दिन हम कहेंगे, नमस्कार,
0: हैदराबाद बहन है।
1: धन्यवाद। चलिए, इतने फोन कॉल आ रहे, एक अंतिम कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, चलिए, हेलो, नमस्ते जी। हेलो
2: हेलो,
1: जी,
2: नमस्ते
1: आपका स्वागत है जी, कौन बोल रही है?
2: जी। किशोर दा के एक गीत मेरे लिए गा दी डाल दिया।
1: बिल्कुल, आप अपना नाम तो बताइए, कौन है आप?
2: मैं हम साकुन
1: अच्छा साकुन जी, अच्छा जी, चलिए बिल्कुल चला देंगे। नमस्ते
2: भरा सनागर मौका मिले तो।

जी बिल्कुल जी, नमस्ते। तो चलिए, हमने एक छोटा सा सवाल रखा था कि कल बॉलीवुड के एक मशहूर गायक की पुण्यतिथि थी, 13 अक्टूबर 1987 को उनका निधन हुआ था। अनोखी आवाज़, अनोखा अंदाज, जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे। गायकी में तो माहिर थे ही, साथ ही कुछ फिल्में जो इन्होंने की थी, चलती का नाम, गाड़ी जैसी फिल्में, पड़ोसन जैसी फिल्में, जिनमें इनका जो कॉमेडी रोल था लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद हम देंगे, और आप सभी ने जिन्होंने इतने प्यार से इस छोटे से क्विज़ में भाग लिया, आपका धन्यवाद। और ये तराना आप सभी के लिए।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: यकीनन ज़िंदगी के सफ़र में जो पल, जो मुकाम, जो वक्त गुज़र जाता है वो पलट कर नहीं आता है, इसलिए अपने वक्त का, अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ की चीज़ों में गंवाना नहीं चाहिए। कभी कभार हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं होता है। सुनी सुनाई बात पर हम यकीन कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई जाने बगैर यकीन करना भी तो गलत होता है ना। तो इसलिए सही समय पर सही चीज़ों को करना, सही समय पर सही बात को बोलना और सही जानकारियों पर विश्वास करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर आप साथ दे रहे हैं, गानों का मज़ा उठा रहे हैं, प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये अगला तराना चलता रहा आप सभी के नाम।

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: और चलिए इसी के साथ सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से। आइए उनको सुनते हैं।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर बरिस 15 अक्टूबर के विश्व ग्रामीण दिवस मनावल जाला, मतलब कि अपन मूलभूत अधिकार जतावा और सतत विकास खातिर काम करा गांव के औरत लोग के ये अंतर्राष्ट्रीय दिन हर बरिस मनावल जाला। और हर बरिस एगो विषय एकर से जुड़ल रहेला। ये बरिस 2026 के जौन विषय रखा गल बा ऊ ह औरत किसान, मतलब कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर। और ये मानल जाला कि गांव के औरत लोग सबसे माहिर हवन सा गरीबी, भूख और मौसम परिवर्तन से निपटे में, और ये सब उपचार वो लोग परंपरागत विधि और तरीका से करे लंजा। अभी देखा मॉरिशस में आजकल सूखा चलता, और आप देखबा कि औरत लोग ही सबसे आगे अयंजा हर परौरी गावे। ये हर परौरी से फिर से पानी बरसी और खेत खलिहान फिर से हरा भरा हो जाए, हमनी के जलाशय फिर से भर जाए। ये जन परंपरा के आगे ले जावे होला रिवाज बा, जन रीति बा, ये तो औरत लोग ही हमेशा से निभैले आल हवंजा। औरत किसान लोग जब भी सूखा के सामना कर ले हवंजा तो सबसे आगे बिना कोई के बोले उ लोग अपन जो रीति रिवाज बा ओकर मुताबिक उ लोग पानी बरसैले हवंजा, या फिर जब बाढ़ उतरल बा तो पानी के बंध ले हवंजा। आप सब कोई जाने लगा कि आगे जब सुखारी मारे तो कैसे ई विधि हर एगो ताबिस्मा में चलत रहल। गरीब से गरीब समय में माँ लोग अच्छा जीवन के कायम रखे में अपन पूरा योगदान दिले हवन जा। परिवार के जीवन कैसे ले जाए के लड़का लोग कबो खाली पेट नहीं सुतियन जा, ई खातिर कैसे उपचार करे के, ई सब माँ लोग जाने लन सा, औरत लोग जाने लन सा। और ख़ास तौर पर गांव के औरत लोग ई उ लोग के सबसे जोन कुशल क्षेत्र है, जोन कंफर्ट जोन है, हुआ पर ई औरत लोग ही काम आवे लन सा। और मॉरिशस में तो ई जोन स्थिति बा ऊ बाही, लेकिन दुनिया भर में मानव जाला कि मौसम परिवर्तन के सामना करे के जो न उपाय बा उ लोग सबसे जस्ती औरत लोग ही ढूंढे लन जा। आपके खेत में सफल अच्छा रही, आपके जो मौसम बा संतुलित रही, आपके नदी के पानी के इस्तेमाल कैसे होई, कहाँ पर लुगा धोवल जाए, कहाँ पर पानी जो पिए के बा उ भरल जाए, ये सब औरत लोग जाने लन जा। और एकर बहुत अच्छा संचालन कर ले आलावन जा। और औरत लोग जाने लन जा कि जब गर्मी ढेर हो तो कैसे चाहिए अपन जो तापमान बा घर के ओके संतुलित रखे के, कौन खिड़की कौन कंवारी के चाहे खुलल रखे के, कहाँ पर चाहिए आपके उठे बैठे के, ये सब आप लोग जाने लग जा। आगे कहाँ रहल फ्रिज के ज़माना, एसी के ज़माना, फिर भी हमनी के माँ लोग हमेशा अपन जो परंपरागत तरीका बा ओके अपना के खाना के सुरक्षित रखलन जा, खाना के प्रिजर्व कर ले हवन जा। और आज ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर इकोनॉमिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्स भी आज भरपूर बा, फिर भी ये सब जो परंपरागत ज्ञान बा नहीं सक बजाने कब एकर काम चलावता। उधर कोविड-19 आल तब भी परंपरागत ज्ञान के ही काम लगल, और आज भी जब सूखा मारेला, आज भी जब मौसम परिवर्तन के परता सामना करेगे तो एकर पहला उपचार गांव के ग्रामीण औरत लोग ही सबसे आगे एके अपनावत हवन जा। आप सब कोई के अंतर्राष्ट्रीय

0: या फिर विश्व ग्रामीण महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और जितना भी ग्रामीण इलाका के औरत लोग हवजा, माँ दादी लोग हवजा, बहन लोग हवजा, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

तो चलिए किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी जानकारियाँ वो हम तक पहुँचाती है इसके लिए। और इसी के साथ चलिए अब बारी है एक भोजपुरी गीत की और हमारी आपके मुलाकात समाप्त होने को चली। सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में इतने प्यार से आपने हमारा साथ दिया आज भी, इसके लिए धन्यवाद। और आप जहाँ रहे अच्छे से रहे, शांति से रहे, सुख सुकून से रहे और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर हमारे साथ जुड़े रहिए। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस कार्यक्रम को। उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 10 बजे भक्ति धारा इस कार्यक्रम में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे सुबह की ठीक 9 बजे है। ये जुड़ते हैं 9 बजे के समाचारों के साथ।
2: सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आई। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज़्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों से निकलकर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू में विनर सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कस्कावेल मॉल की कई दुकानों में चोरी करने गए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल थे। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टिया गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और ₹50,000 का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद, लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य हैं ये कुछ बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद हैं, नर्सरीज बंद हैं। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, SC और HSC की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से आज सुबह से चलने लगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सेवा ठप पड़ी हुई है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना बनी हुई है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें आज सुबह बिजनेस मॉरिशस की कम्युनिके पर टिकी रहीं। बिजनेस मॉरिशस द्वारा जारी इस कम्युनिके में सभी गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू किए जाने की सिफारिश दी गई। कल रात की हिंसक वारदातों के बावजूद कर्फ्यू हटाए जाने के बाद बस सेवाएं शुरू हुई, सड़कें भी साफ रहीं, जिस कारण से ये फैसला लिया गया। बिजनेस मॉरिशस ने सभी कंपनियों के जिम्मेदारों से मांग की है कि वे हालातों को समझें और काम की योजना तैयार करें, ताकि खासकर अब जब स्कूल और नर्सरीज भी बंद हैं, स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर नई जानकारियां दी जाएंगी। CWA के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। CWA के वेबसाइट पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। ये सभी उपनाम के पहले अक्षर की परवाह किए बिना यानी A से Z तक किसी भी दिन आवेदन जमा किया जा सकता है। ICT मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की है। नवरात्रि के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान बनाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा सुख, समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के इस दिव्य स्वरूप को नमन किया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। विदेश में वाटिकान की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोप लियो 14 को लंग कैंसर हो गया है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े को

0: निचले हिस्से को निकालकर सर्जरी की गई। 71 साल के पपकी मंगल को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी की गई। ये सर्जरी सफल रही। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. Radio Mauritius.
2: 8.19 kHz पर ये है Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
1: आज की चर्चा।
3: मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लहरों पर रेडियो मॉरिशस का ये प्रसारण और आज की चर्चा का ये कार्यक्रम केवल रेडियो मॉरिशस पर से सीधा प्रसारित होता हुआ। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें नवरात्र की पावन मंगल कामनाओं के साथ। आज के इस कार्यक्रम को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। वैसे आपको ये भी याद दिलाते चले कि आज केवल हम आपका साथ देंगे, क्योंकि देश भर की कुछ तनाव भरी परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे अतिथि हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, परंतु कुछ ऐसी ही बातों को लेकर आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल हम भरेंगे पूरी इन्फॉर्मेशंस के साथ। और अगर बिल्कुल आप भी हमारा साथ देना चाहें तो बेशक 4028085 के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी बातें जो बहुत ही ज्यादा तनाव हमारे पूरे दुनिया में आज देखा जाए तो सोशल मीडिया के कारण कितने लोग मानसिक बीमारी, मानसिक हेल्थ की नुकसान से परेशान हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपको देंगे और ये सारी जानकारियां कुछ ऐसी ठोस रिसर्चेस पर आधारित हैं। एबीपी न्यूज़ के अनुसार बिल्कुल ऐसा माना गया कि जीवन में जहर घोल रहा है सोशल मीडिया, डिप्रेशन का बना रहा है शिकार। और इस पर बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को परेशान कर रही हैं। वैसे आज के ज़माने में हमने ये तो देख ही लिया है कि सोशल मीडिया एक तरह से एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें बिल्कुल दुनिया भर की खबरें मिनटों में देता है। सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगियों को जितना आसान बनाया है उतना ही मुश्किल से भी भर दिया है। आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता उसे दुनिया में चल रही कई घटनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने लोगों को लोगों से जोड़ने का काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मेंटल हेल्थ को कितना अधिक नुकसान पहुंचाता है और कैसे हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के लिए बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर देता है। शायद आप सोशल मीडिया की चकाचौंध में इसे महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप तनाव, चिंता और डिप्रेशन के शिकार होते हुए चले जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि हेल्थ लाइन ने हाल ही में एक सर्वे किया था और इस सर्वे में ऐसा माना गया कि 25% यानी 25% लोगों ने माना कि सोशल मीडिया से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि 53% यानी 53% ने कहा कि इसका इस्तेमाल कम करने पर मेंटल हेल्थ में काफी सुधार होता है। दुनिया भर में आई बिल्कुल एक समय था जब 2019-2020 में कोरोना महामारी के दौरान खराब मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की जो संख्या थी वो बढ़कर बिल्कुल 66% हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग

घर में थे और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। एक्सप्रेस वीपीएन के माध्यम से 2021 में सर्वेक्षण के मुताबिक 1500 अमेरिकियों पर किए गए शोध में 86% ने ये कबूल किया था कि सोशल मीडिया सीधे तौर पर उनकी खुशी और आत्म छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि कुछ लोगों ने चिंता, अकेलापन और डिप्रेशन की बात भी कबूली। सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के कई फायदे हैं, ऐसा भी कहा गया। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के 2022 के क्रॉस नेशनल ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों ने मनोरंजन के लिए या कोरोना महामारी के दौरान अकेलापन को कम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उन्होंने खराब मानसिक स्वास्थ्य का भी अनुभव किया। दरअसल सोशल मीडिया पर जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से हमें खुद पर डाउट होने लगे, तो अक्सर चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। हम सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट शेयर करते हैं और उस पर अगर लाइक्स कम आए या फिर हमारे चाहने वालों का कोई कमेंट ना आए या किसी ने उस पोस्ट की बुरी तरह से निंदा कर दी है, तो हम इन सब बातों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। दिमाग में घंटों तक बस वही बातें चलती रहती है कि फलाना व्यक्ति ने मेरे इस पोस्ट पर लाइक या कमेंट क्यों नहीं किया, और जिसने किया उन्होंने इस तरह से कमेंट क्यों किया। इन सारी बातों से हम एक चिंता का जाल बुनते चले जाते हैं और खुद ही उसमें फंसते चले जाते हैं। और सोशल मीडिया से जुड़े रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के लिए फायदे तो देती है, पर कौन से फायदे। सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे, दूसरों से खुद को कमतर नहीं समझेंगे। डिप्रेशन और टेंशन से हम कोसों दूर रहेंगे और हमारा जो मूड है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिव चीजों में हम कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। बिल्कुल, जितनी भी चीज़ें हैं जीवन में, हमेशा हमें प्रोडक्टिव बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। रोज़ लाइमलाइट में आने के लिए क्या पोस्ट डालें ये नहीं सोचना पड़ेगा। आपका असल जिंदगी से जुड़ाव ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सोशल मीडिया से बचे हुए समय का आप अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार आपने सोचा होगा कि आज मैं मोबाइल उठाता हूँ बस 5 मिनट के लिए देखता हूँ, और जब आपका सर उठे और आप देखते हैं कि 5 मिनट के बजाय मैंने तो 2 घंटे वेस्ट कर दिए। होता होगा ना आपके साथ भी ऐसा ही। और बिल्कुल, आज के ज़माने में हमने देखा है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और बिल्कुल कुछ दिनों से हमारे देश में बढ़ते हुए तनाव को मद्देनज़र रखते हुए कई बार लोग कुछ ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जिससे कि समा को और शांत करने के बजाय, हम कहते हैं ना कि आग में तेल झोंकने वाला काम करते हैं, यानी किसी के घाव पर मिर्ची मसाला लगाने वाला काम करते हैं, नमक लगाने वाला काम करते हैं। और बिल्कुल आज का समय, हम ये नहीं कहते हैं कि परिस्थितियाँ ठीक हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं, परिस्थितियाँ और बिगड़ती जा रही हैं। पर ऐसी बिगड़ती हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से हमें अपने स्वास्थ्य पर भी संयम रखना है, क्योंकि आज हमारे देश में देखा गया है कि मानसिक तनाव से कितने लोग पीड़ित हैं। साथ ही साथ हृदय के रोग, डायबिटीज़ जैसे रोगों से लोग किस हद तक पीड़ित हैं, और आजकल साइकोसोमैटिक डिजीज़ किस हद तक हमारे समाज को खोखला कर

करती चली आ रही है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना अति आवश्यक है, लेकिन कौन समझाए कि सोशल मीडिया पर क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि आज कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का एक बड़ा सा समंदर आपके सामने खोल कर रख दिया है। अब इसमें से कौन क्या कितने बजे क्यों ग्रहण करता है, इस पर कैसे

डे या वर्ल्ड मेंटल पीस डे हम मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखें तो कैसे? सोशल मीडिया ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन आनंद और एडिक्शन के बीच की एक पतली सी रेखा जो कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चलिए इस पर आधारित एक बहुत ही बढ़िया आपको बताते हैं। रिसर्च हुआ था कि दिल्ली की एक सेल्स प्रोफेशनल प्रियंका प्रधान रोज सुबह उठते ही खुद को इंस्टाग्राम चेक करने से नहीं रोक पाती थी, और ये उसे एक एनर्जी देता था, ये उसका मानना था। और आधिकारिक तौर पर उसके दिन की शुरुआत बस अपने मोबाइल से होती थी। एक घंटे से अधिक समय एक तक वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती थी, और उसको स्क्रॉल करने के बाद वो अपने बिस्तर से उठती और दिन के काम शुरू कर देती। ब्रेक के बीच वो दिन के दौरान कुछ मीम्स भेजने के लिए फिर से फ़ोन उठाती और दोस्तों से अपडेट प्राप्त करती। शाम को काम के बाद फिर से फीड के माध्यम से बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लगती हैं, और जब तक वो रात को थक न जाए तब तक वो मोबाइल अपने हाथों से जुदा नहीं करती, अलग नहीं करती। और देखा जाए तो निश्चित रूप से वे अकेली नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया के साथ वो कनेक्टेड है। और क्या ये हमारी भी आदत है? कहीं ना कहीं हमारे में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही घंटी बजे कि हाय, ये तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ। हम सोशल मीडिया पर इतने अधिक निर्भर हैं कि हमें नहीं पता कि इसके बिना क्या करना है। सच में देखा जाए तो हम एक तरह से अपाहिज बन चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप इसका एक उदाहरण है, और अधिकांश लोगों ने बेचैनी महसूस करनी शुरू कर दी और वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि हम चाहते क्या हैं यह हमें खुद नहीं पता। आप इसे नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल बात है? वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्मों का अत्यधिक उपयोग हमारे गिरते मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, और बिल्कुल कहीं ना कहीं अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा आज अधिक से अधिक लोग ले रहे हैं। और केवल अकेलापन ही नहीं, हम तो समझते हैं कि घर में लोग होने के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और दुनिया की हर वो चीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पर चलिए, कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, पर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानजनक बनती जा रही है, ये समझना भी तो आवश्यक है ना?

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

9:25 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज की चर्चा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया से बढ़ने वाले मानसिक तनाव, मानसिक रोगों के बारे में और कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो बिल्कुल ये ठोस प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से आज समाज में सोशल मीडिया के दुरुपयोग से या सोशल मीडिया को यूज़ करने से अधिक उसका इस्तेमाल करने से अधिक इन्फॉर्मेशन लेने से या अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर रहने से कई प्रकार के मानसिक रोग हमें बिल्कुल परेशान करते हैं। और बिल्कुल पुणे, भारत के पुणे में स्थित मनोवैज्ञानिक तिथि कुकरेजा ने हेल्थ शॉट्स के साथ साझा किया ये बात कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोशल मीडिया ने हमें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने के लिए मदद की है, लेकिन ये हमारे अकेलेपन या हम अकेलेपन का बैसाखी बन गया है। और वे लिखती हैं कि मेरे ऐसा कहने का कारण ये है कि हम अब आत्मचिंतन नहीं करते, हम किसी भी प्रकार के खालीपन को भरने के लिए जल्दी से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने में लगे जाते हैं और उनका अत्यधिक उपयोग चिंता और अकेलेपन के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। और वे ये भी लिखती है कि बिना सोचे फीड स्क्रॉल करना, यानी हम बिना वजह कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के वीडियोस को वेरीफाई किए बिना या किसी भी चीज़ को वेरीफाई किए बिना सोचे समझे हम फीड को स्क्रॉल करने में हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई रोकने वाला है ही कौन। लेकिन कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि आपको पता भी नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि आप इन प्लेटफॉर्मों पर कई घंटे बिता देते हैं? और खैर, ये एक हानिकारक बात है जो सोशल मीडिया की लत को एक तरह से जन्म देता है। लत यानी हम कह सकते हैं एक एडिक्शन, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि भाई धूम्रपान मत करो, एक भी सिगरेट लेने से ये कहीं ना कहीं आपके अंदर धूम्रपान की लत को बढ़ाता है, वो एक तरह का एडिक्शन है। शराब मत पियो क्योंकि ये लत को बढ़ाता है। मादक द्रव्य मत लो, ये हमारी लत को बढ़ाता है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर उस लत को बढ़ाता है। तिथि कुकरेजा ये भी कहती हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग केवल कमेंट, लाइक और शेयर करने के लिए होता है। ये तत्काल संतुष्टि का एक डोपामाइन रश को जन्म देता है जो हमें हर बार उस पर वापस जाने के लिए उकसाता है, उत्तेजित करता है। लेकिन ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना शुरू करते हैं तो हमारी खुद की धारणा, सेल्फ इमेज प्रभावित होने लगती है। हम क्या हैं, हम कैसा फील करते हैं, ये सब हम नहीं सोचते, बस दूसरों को प्लीज करने में, दूसरे कैसा करते हैं उनके कंपैरिजन में हम अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं। पेन मेडिसिन और मैकलिन अस्पताल के शोध के अनुसार, यानी ये रिसर्च के अनुसार, सोशल मीडिया चिंता और अवसाद के सबसे बड़े कारणों में से एक है। और एक और अध्ययन ये भी कहता है, रॉजर्स बिहेवियरल हेल्थ द्वारा किया गया ये एक रिसर्च है, ये देखता है कि कैसे इंस्टाग्राम पर कम फॉलोअर्स होने के कारण बच्चे

बच्चे, यंगस्टर्स डिप्रेशन और खाने के विकारों से पीड़ित है। यानी कहीं ना कहीं अगर आज इतनी कम उम्र वाले बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण बस यही है कि उनके फॉलोअर्स कम हैं, उनके लाइक्स कम आते हैं, लोग उन्हें देखना कम पसंद करते हैं, हालांकि उनके दोस्तों के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। और ऐसे विचारों से आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर्स में भूख मरती जा रही है। बच्चे खाना कम खा रहे हैं, खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ये एक सीधा प्रभाव है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर ये एक सीधा प्रभाव है। फिल्टर और केयरफुल क्यूरेशन भी लोगों में एक तरह से फोमो, FOMO, इसका मतलब ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना पैदा कर रहा है। अगर आपको नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा याद हो, किसी ने अगर देखी हो ये डॉक्यूमेंट्री, तो आपको शायद पता होगा कि आपकी बागडोर आप नहीं बल्कि सोशल मीडिया नेटवर्क है। आप वही देखते हैं जो वे आपको दिखाना चाहते हैं। तथ्य ये है कि आप केवल लोगों को ऐसा जीवन जीते हुए देखते हैं जो आपको भी, लेकिन आपको भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ये समान नहीं है। कई बार हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, कई बार हमारे कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर में है, बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नोइंगली और या अननोइंगली कहीं ना कहीं हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं। इतना ही नहीं, आज देखा गया है कि सोशल मीडिया आपसी संबंधों को भी किस हद तक प्रभावित करता है। तिथि कुकरेजा कहती है कि निश्चित रूप से ये सच है, यहाँ तक कि जब हम अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताते हैं तो हम केवल अपने सोशल मीडिया फीड के बारे में सोच सकते हैं। हम लोगों के साथ आमने सामने नहीं जुड़ पाते। इसके बजाय हम में से अधिकांश एक अलग दुनिया में ही रहना पसंद करता है। आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन आप स्क्रीन से परे बहुत कम दोस्तों को अपने पास पाते हैं। सोशल मीडिया अच्छा है, पर उसके दुष्परिणाम उससे भी बहुत ज्यादा अधिक। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, ये अजीब लग सकता है लेकिन सोशल मीडिया पर खराब बातें तेजी से फैलती है, और इस बात का प्रमाण आपने कुछ दिन पहले के प्रदर्शनों के माध्यम से देख ही लिया होगा। गाली देना, गाली गलौच करना, गंदी बातें करना, किसी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, किसी को कुछ भी कह देना, ना सोचे ना समझे, और बस जितनी जल्दी से ये आग समाज में फैले, आपको लगता है कि आपने बहुत महान काम कर लिया। इतना ही नहीं, कई बार ऐसी बातें लगातार सुनने से या लगातार देखने से हमारा मन भी उसी दिशा में दौड़ने लगता है। आपको शायद याद होगा, हमारे घरों में कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा होगा कि खाते समय या फिर भोजन करते समय ऐसी चीजों को ना देखें। ये हम नहीं कहते, ये कई सारे ऐसे शोध में पाया गया है कि जो हम देखते हैं
एक तरह से जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार का हमारा मन बनता चला जाता है। और जैसा भोजन हम अपनी आँखों को दे

कहते हैं, जैसी बातें हम बार बार सुनते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का भोजन है, हमारे दिमाग का भोजन है। तो अगर आप अपने भीतर कूड़ा डालेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग भी किसी कूड़ेदान से कम थोड़ी रहेगा। 2009 से 2012 के बीच 100 मिलियन से अधिक फेसबुक उपयोगकर्ताओं से 1 बिलियन से अधिक स्टेटस अपडेट का आकलन करने के बाद ये पाया गया कि नकारात्मक पोस्ट की संख्या में 1% की वृद्धि हुई है। 2014 में ऑस्ट्रिया में कुछ शोधकर्ताओं ने, कुछ रिसर्चर्स ने पाया कि प्रतिभागियों ने फेसबुक पर 20 मिनट तक स्क्रॉल करने के बाद बैड मूड की सूचना दी, जो कि इंटरनेट ब्राउज करने वालों की तुलना में कम थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग स्क्रॉलिंग को समय की बर्बादी नहीं मानते, उनको लगता है कि ये अपने आप को इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात हो ही नहीं सकती। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ये हेल्दी है, ये अच्छी बात है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 7 या अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उनमें 0 से लेकर 2 प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों की तुलना में चिंता के जो लक्षण हैं, उसकी संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। अब आपको उदाहरण देते हैं, हमारे कई बड़े बुजुर्ग हैं शायद इस बात को ना समझ पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे कॉमन है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मान लीजिए अगर आपके अकाउंट्स इन सभी पर हैं, आप फेसबुक भी देखते हैं, आप इंस्टा पर स्क्रॉल भी करते हैं, आप ट्विटर भी देखते हैं, आप टिकटॉक भी देखते हैं, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप पर कई कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं और आप इन सभी पर एक्टिव हैं, यानी इन सभी के प्लेटफॉर्म पर आप सारी चीज़ें देखते हैं और उसे देखकर सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो बस एक एंटरटेनमेंट के रूप में हो, पर आप उसे ग्रहण करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, या हो सकता है कभी कभार आप यूट्यूब पर कुछ देखते हैं या फिर फेसबुक पर बस कुछ मिनटों के लिए, या मान लीजिए आधा घंटा, पौना घंटा आपने उसमें समय निकाला, कंपैरिजन में उन व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति है वो उतनी चिंताजनक नहीं होगी, पर जो लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2016 में किए गए एक और रिसर्च में 1700 लोगों, यानी 1700 लोगों को शामिल किया गया था और इनमें सबसे अधिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों में अवसाद और चिंता का 3 गुना जोखिम था। कुछ कारणों में ऐसा भी कहा गया कि साइबर बुलिंग, अन्य लोगों के जीवन के बारे में विकृत सोच धारण करना और कई सारे ऐसे मामले शामिल थे। अब आप खुद सोचिए, सोशल मीडिया को इस कदर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह?

हमारा देश एक छोटा सा स्वर्ग, और इस स्वर्ग की सुंदरता को हमें बनाए रखना है, हमें स्वस्थ रहना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सके। और हर बुधवार की तरह आज हम जुड़े हैं कुछ ऐसी ही बातों को लेकर, बिल्कुल ये हमारे स्वस्थ को लग करवाते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं तनाव देश में नहीं पर पूरे विश्व में तनाव दीमक की तरह बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण कहीं ना कहीं बस यही है कि हम कुछ ऐसी चिंताओं को पाले बैठे हैं जिस पर ना तो हमारा काबू है, पर देखा जाए तो बिल्कुल हम इसको काबू में ला सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हुए भी इस दलदल में अपने हाथों से फंसते चले जा रहे हैं।

सोशल मीडिया के फायदे अनेक हैं, पर साथ ही साथ मानसिक तनाव और गलत जानकारियां कई बार हमारे जीवन को एक गंभीर रूप, एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती। सोशल मीडिया पर अक्सर कई बातें आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कई बार उसका दुष्परिणाम ये होता है कि कई जानकारियों को लेकर हम अपना मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशंस को हम सर्कुलेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्योंकि अगर कोई हमें कोई वीडियो पोस्ट कर देता है, नहीं जानते कि वो सही है गलत है, उसे लेकर हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य, नौकरी, समाज से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को लेकर हम चिंताजनक परिस्थितियों को और उकसाते हैं और बढ़ाते हैं। दंगों और सामाजिक तनाव के कारण भी कई बार कुछ ऐसी अफवाहें उठती हैं जो दंगों को भड़काती हैं और आम नागरिक होने के नाते हम इसमें भी अपना सहयोग देते हैं, ना कि समस्या को शांत करने के बजाय हम समस्या को और उलझाते चले जाते हैं। और आज देखा जाए तो दूसरों की तुलना में, दूसरों से तुलना करने में हमारा जीवन और भी नष्ट होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन की तुलना के साथ साथ हम डिप्रेशन को जन्म लेते हैं। और इसी कारण कई बार हमने देखा है कि घंटों तक रील देखना, घंटों तक वीडियोस देखना, घंटों तक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस को दिमाग में डालने के बजाय, दिमाग में डालने से हम कहीं ना कहीं पूरी नींद नहीं कर पाते। नींद भी आती है तो बहुत ही अनहेल्दी नींद, और देखा जाए तो रात में देर तक स्क्रीन को देखने से मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण नींद न आने की बीमारी और तनाव बढ़ने की समस्या आज समाज में देखी गई है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल करना या भद्दे कमेंट्स करना बहुत आसान हो गया है और इसका शिकार होने वाले लोग गहरे मानसिक तनाव और अकेलेपन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि लोगों को उनकी लत लग जाती है। जब किसी को उम्मीद के मुताबिक लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिलते तो वे उदास और तनावग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी खबर पर अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से बचें, तो कभी भी किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास करने या उसे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता या फिर उसकी फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये घटना सही है और क्या मेरे इस फैक्ट को शेयर करने से क्या कोई दुष्प्रभाव हो सकता है, इस बात पर ज़रूर सोचिए। सोशल मीडिया का उपयोग करने का एक समय निर्धारित कीजिए।

टाइम लिमिट जरूर तय कीजिए। मानसिक शांति के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर आप तनाव को कम करना चाहते हैं तो भाई ये सारी कड़वी दवाएं तो पीनी पड़ेंगी, क्योंकि कड़वी दवाओं से ही इंसान स्वस्थ हो सकता है। और आज के जमाने में बस अगर आप सच में इन सभी तनावों से दूर होना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी सोशल मीडिया की कुछ ऐसी गलत बातों को सुनकर, किस प्रकार से आप इन लतों से, इन एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। क्योंकि मन को काबू में करना सबसे चैलेंजिंग काम है, पर जो इस फील्ड में मास्टरी कर लेता है ना, वो जिंदगी की किसी भी परिस्थितियों से डगमगा नहीं सकता। और आज का समय बस हमें यही करना है। इसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए।

दोस्तों, आज का ये सफ़र बस यहीं तक का था और आशा करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपको लाभदायक रही होंगी। जाते जाते बस यही कहेंगे कि जब चोट लगती है, जब कोई अपना घायल होता है, जब कोई अपना हमसे बिछड़ता है, दर्द सभी का एक समान होता है। दुख, दर्द, तनाव धर्म मजहब देखकर नहीं आते, और जो लोग धर्म और मजहब का सहारा लेकर चोट पहुंचाते हैं, वे कभी धर्म और मजहब में मानते ही नहीं। दिल में इस भावना को बसाए रखना, एकता, एकजुटता की भावना को बनाए रखना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां बहुत बहुत ही खराब है, हम सभी से निवेदन करते हैं कि संयम को धारण करें हुए पूजा प्रार्थना के समय को बस हम भक्ति में लगाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश की जो भी बिगड़ती परिस्थिति है वो जल्द से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ पुनः उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुरिमागी आशनों से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
2: सभी को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्र और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए डटे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गई। तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया। मेट्रो सेवा ठप पड़ी हुई है, स्कूल बंद हैं, लेकिन एससी और एचएससी की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य ये कुछ बातें हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना बनी हुई है। इलोजीत माँ की स्थिति को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिज ने यह अच्छी खबर सुनाई कि उनकी हालत में सुधार है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटे में उसे होश आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उसके हाथ पैर सब सही सलामत हैं और उसने आंखें खोली हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश शामलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम की एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाया था। CWA के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। CWA के वेबसाइट पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। सभी उपनाम से पहले अक्षर की परवाह किए बिना, यानी ए से जेड तक आपका सरनेम किसी भी अक्षर से शुरू होता हो, आप किसी भी दिन आवेदन जमा करा सकते हैं। ICT मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि अनावश्यक आवाजाही और कार्यालयों के काउंटर पर लंबे समय तक आपको इंतजार न करना पड़े। विदेश समाचारों में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को लंग कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 साल के पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई है। सर्जरी के बाद पोप सामान्य रूप से होश में आ चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play and NBC.MU.
0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 14 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:05 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर पुनः हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। और यहाँ पर भक्तिधारा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़ चुके हैं और अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। नवरात्रि की मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों को, माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और आज नवरात्रि

0: पावन पर्व का जो है चौथा दिन है, और आज के दिन माता कुष्मांडा की जो है पूजा अर्चना होती है, और माँ जो है भक्तों का कल्याण करती है, माँ जो है अपने भक्तों की पुकार को सुनती है, माँ जो है अपने भक्तों की परेशानियों को समझकर उनका परेशानियों का निवारण भी करती है, और माँ जो है सबका कल्याण करती है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, पंडिता प्रेमिला जी की प्रस्तुति में। तो अभी के लिए आइए माता रानी का जय जयकार करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
1: हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.

माता रानी का जय जयकार चारों ओर हो रहा है। श्रोताओं, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर भक्त अपने अनुसार जो है माता की पूजा अर्चना कर रहा है। और माँ जो है कल्याणकारी है, माँ अपने भक्तों का सदा कल्याण करती है, माँ जो है अपने भक्तों का साथ सदा देती है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जो सभी रोग दुख से अपने भक्तों को दूर रखती है। और हर माता का हर एक स्वरूप अपने आप में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है। और माता का ये जो स्वरूप है हमें ये भी बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और किस तरह से जो है हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति है। इस दिन उनकी पूजा, मंत्र जाप और आरती के साथ जो भी सच्ची लगन से माँ को पूछता है, माँ जो है अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति लेकर आती हैं। तो

0: श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम विनय अंजलि, जिसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर गंगू जी और उनके साथ में पंडिता प्रेमिला जी। तो आइए उनको सुनते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोताओ, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे पंडित वाल्मीकि महेश जी के गाए भजन से। आप इसका रसास्वादन करें।

0: श्रोताओं, स्टूडियो में उपस्थित है श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी। हम उनका अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करें किसी एक संदेश द्वारा, और संदेश आधारित हो वेद मंत्र पर। पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी।
1: ओम अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेतमर्त्य अग्निमिंधे विवस्वभि ज्योतिसर्वोप भगवान है आनंद का भंडार, मन बुद्धि को शोध कर ले उसका आधार, योग युक्त होकर सकल करता जो व्यवहार, ब्रह्म तेज धार कर हो जा भव से पार। माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं, ज्योति स्वरूप भगवान की भगवता के लिए हम उनको आसपास अनुभव करते हैं। उनके गुण कर्म स्वभाव का ध्यान चिंतन मनन ही आनंद का भंडार है। वही हमारी बुद्धि और मन शुद्ध पवित्र कर दिव्यता भद्रता शालीनता के संचार करने का आधार है, जिसे परमात्मा रूपी अग्नि की ज्योति उद्भुत होने से आत्मा की पवित्रता, हृदय परिवर्तन, मन चित बुद्धि सशक्त रहती, जिसे अहम का विनाश होता और परमात्मानंद से भर जाती, मन विषयों की ओर न जाकर भगवान की भगवता की ओर उतरने लगता, हम प्रभु ध्यान में लीन रहते, उन्हें समझकर मानने के लिए हम योग युक्त हो जाते, ताकि श्रद्धा से ध्यान कर बुद्धि को अच्छे प्रकार पा लेते हैं, उनके उपासक बनकर गुणों का चिंतन मनन और ध्यान कर हृदय में धार कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव समान अपने व्यवहार से अपने स्वभाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे आनंद कंद भगवान से हमारी प्रार्थना सदा रहती कि आप हमारी बुद्धि मन को शोध कर हमारे भीतर तक का कोलाहल शांत तो करें, ताकि अंतकरण प्रकाशित हो जाए। मिथ्या ज्ञान से दूर सद्बुद्धि आगे बढ़ाने की कृपा चाहते, जैसे अंधकार में सारा काम बंद हो जाता है। श्रोताओं, परमात्मा ज्योति स्वरूप हमें आपकी अग्नि का प्रकाश अति आवश्यक है, जिसे हम रोगों से विकारों से छुटकारा पा सकें। हम सभी के हित कल्याण के लिए परमात्मा रूपी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उनको अपना आधार बनाने के लिए अग्नि उद्भूत कर दयालु देव के ब्रह्म तेज धारण कर भव से पार पाने की विनय करते हैं। हमारे नाना प्रकार की अग्नि संबंधी कार्य सिद्ध कर पूर्ण करने के लिए सुख शांति निरोग तो रहते। श्रोताओं, नम्रता से पूरा जीवन योग से भर कर अच्छा श्रेष्ठ सद्व्यवहार तो कर सकें, मन प्रति जागृत रहकर चंचलता बीते समय की याद भविष्य के झूठे सपने से बच सकते हैं। हमें ब्रह्म ज्ञानी से ज्ञान स्वरूप बनने की चाह रहती, ताकि ब्रह्म तेज के तेजस्वी बनकर उपकारी हितकारी कार्य कर सकते हैं। चपल कर

करतूतों से बच सकती है जो वाणी से बोलते आचरण में दिखाई देते, इसलिए मंत्र का ब्रह्म शब्द है अग्निम इंधानो मनसा। हम सदा अपने हृदय रूपी कुंड में परमात्मा रूपी अग्नि उद्बुद्ध या प्रदीप्त बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, मन के पवित्र सोच विचार से योग युक्त होकर करते हैं, जो हमें ऊर्जा से ऊर्जावान, तेज से तेजस्वी, ओज से ओजस्वी, ज्ञान से ज्ञानी बनाते हैं। हम होश में आकर जागकर साधना करते हुए पुण्य धर्म अच्छाई स्नेह के सन्मार्ग की ओर चल सके। इस ऊर्जा को ऋषि महर्षि वरदान रूप में पाकर अनेक हितकारी परोपकारी महान कर्म कर मन में अवर्णनीय शांति उतार लेते, अग्नि द्वारा अपना समस्त कर्म सिद्ध कर डालते, जिसका गुण प्रकाश, ज्योति, गर्मी, उजाला, ज्ञान, वाणी आदि है, जिसकी चुंबकीय उजाला शरीर में विकार, रोग, बेचैनी, चोट से बचाती है। हम मन में पाप, अधर्म, बुराई से घृणा करने लगते हैं। अग्नि के प्रज्वलित सन्मार्ग पर चलकर उच्चतम सफलता पा लेते और पुण्य कर्म के भागी बनते। अग्नि के ईंधन तन मन को स्वस्थ कर असाध्य रोगियों पर दया करुणा पवित्र स्नेह से उसका नव निर्माण करती, मन दिव्य सद्वृत्ति उत्पन्न होती। तब तो परमात्मा ध्यान एवं साधना करते रहते ताकि सच्चे आनंद और प्रकाश अनुभव कर सकें। श्रोताओं, हमारा क्रोध करुणा में, निंदा प्रार्थना में, काम ब्रह्मचर्य में, लोभ त्याग में, हिंसा अहिंसा में, वेदना आनंद में, ईर्ष्या प्रेम में, द्वेष स्नेह में, द्वंद समता में बदल जाए। हृदय कुंड में परमात्मा रूपी अग्नि जाग जाए, श्रेष्ठ महान कर्म बन निरर्थक कर्म से मुक्ति दिलाती हैं, आगे ले जाकर ऊपर उठाती। हमारे चित्त में उत्पन्न होकर तनाव, समस्या, परिस्थिति के बोझ तले दबने से बचाती। खान पान हमारे चयन अनुसार शुद्ध होता, दुख के बंधन से छूट जाते, वाणी मंत्र में खो जाती और परमात्मा रूपी अग्नि के साथ यात्रा शुरू हो जाती। यह जागनी के सुरभित सुमन खिलकर स्नेहिल सुगंध फैलाने लगती। श्रद्धा की साधना, अहिंसा, प्रेम, निष्पाप, दिव्य योग साधना से अपने हृदय में परमात्मा रूपी अग्नि जला सकते हैं। दूसरे पड़ाव में बुद्धि को सचेत करने के लिए वेद आदेश हैं, जैसे धियम सचेतम अर्थ्यः। हम धारणावती बुद्धि, मेधा, रीतम, प्राज्ञ एवं ब्रह्मचर्य ज्ञान धारण करने की प्रभु कृपा चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमारे पास बुद्धि एवं वाणी है, ज्ञान मनन चिंतन कर जटिल से सरल की ओर जाने का लाभप्रद मार्ग है। हम विवेक से बुद्धि के नेत्र खोलते और महान कार्य करने के लिए अपने अंदर की अग्नि को जलाते, जैसे देव दयानंद ने अपनी बुद्धि को जागृत कर महर्षि बनकर विश्व को स्वर्ग बनाने के कार्य में अपना सर्वस्व समर्पण से सफल कर सके। श्रोताओं, जीवन में हमारी बुद्धि अनमोल घड़ी का ज्ञान देकर नया मोड़ दे सकती है, ताकि वैराग्य भावना से हम पदार्थ साधन संग निर्लिप्त होकर वस्तु को बुद्धि से किनारा कर दे। मर्त्यः, हम मानव मरण धर्मा हैं, बुद्धि के परा अपरा ज्ञान से जीवन आदर्श बनाना है, ताकि संसार से विदा लेते हुए अपने पीछे समय रूपी रेत पर अपना चिन्ह छोड़ सके, जिसके लिए शरीर संबंध पदार्थ से छूट सके। शरीर रूपी सोने को अग्नि में तपाने से विकार जलकर निखार लाते, शुद्ध रूप सामने आता, मन निर्मल रहता, शरीर से आत्मा अनेक भोग भोगती और मिथ्या ज्ञान से छूट जाती, ताकि सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकती है, मृत्यु से दूर हो जाती। हम प्रतिदिन वस्त्र

0: धारण करती है, उसे उतारते हैं, मैले होने पर बदलते हैं, फट जाने पर फेंक देते, नया धारण करते, जिसका उपयोग शरीर ढकने के लिए है। शरीर भी आत्मा का वस्त्र है, जिसे धारण करते ही मृत्यु की ओर लौटने लगते। आयु रोग मृत्यु के अंधकार से छीन होकर शरीर समाप्त हो जाता, इसलिए हृदय कुंड में परमात्मा अग्नि को सुलगाकर प्रकाशमान करती, क्योंकि जर्जरा शरीर बीमार निर्बल होकर मृत्यु पा लेता, आत्मा अमर अजर रहकर गुण की सुगंध ज्ञान का प्रकाश बुद्धि की श्रेष्ठता से सर्वोत्तम कर्म कर मृत्यु से छूटना चाहती। धीय सचेत बुद्धि हमें सचेत कराती कि भोग पदार्थ नाशवान है, जीवन निर्वाह के लिए खान पान आवश्यक है, लेकिन खान पान के लिए जीवन आवश्यक नहीं है, जिसे न मोह करते। अंत में मंत्र का स्वर्णिम वचन है, अग्नि मिंधे विवस्व भी, हम उत्तम प्रकार से यज्ञ अग्नि उद्भुत अर्थात सुलगाने एवं महान कर्म प्रभावशाली ढंग से करने की प्रार्थना करती हैं। सूर्य को उदित और अस्त होते समय परमात्मा को हृदय में धारण कर तम के अंधकार से मिटाते हैं, जिससे प्रखर बुद्धि पा सके, मन मगन रह सके, बाहरी वस्तु तुच्छ लगे, भगवान के अनन्य प्रेम में खोकर आत्मीय संबंध स्थिर कर सके। श्रोताओं, आत्म अग्नि सुलगाते ही प्रभु अनुराग में ऊर्जावान शुभ चिंतक की याद में डूब जाते। प्रभु प्रदीप्त अग्नि से विनय करते, अंधेरे पथ पर ज्ञान दीप जल जाए, अग्नि की ज्योति से दुख विघ्न कष्ट दर्द मिट जाए, पग में खार न चुभे, कंटक पद का चुन जाए, अंधकार के भटकन से आँख में आंसू न झूले, जीवन सुगम बन जाए, रात कट कर भोर जीवन में जाग जाए, अग्नि की ज्योति राह दिखा जाए, निराशा का आंचल छूट जाए, मन में आस जाग जाए, परमात्मा कब से राह निहार रहे हैं, लक्ष्य हमें पुकारे, मन बुद्धि उत्साह से भर जाए, यही प्रभु से पुकार बन जाए, जो विनय अंजलि का संदेश रहा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोतागण, अभी आपने आदरणीय पंडिता प्रेमिला श्रीतन जी को सुना। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। आपने कार्यक्रम को सुना, आपको बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, नमस्ते। अंत में आप एक भजन सुनेंगे और हमें

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम विनयंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। दिन के 11:15 बज रहे हैं और हम नवरात्रों का ये पावन पर्व मना रहे हैं और नवरात्रि के वक्त चारों ओर मानो भक्तिमय वातावरण छा जाता है। सभी घरों में हर कोई माता रानी की आराधना करता है। शाम के वक्त सभी लोग जो है मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और माता रानी का पाठ सुनते हैं और माता रानी की का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर लौटते हैं। कहीं ना कहीं ये जो 9-10 दिनों का नवरात्र और फिर दशहरा से अंत होता है ये पर्व, ये अपने आप में एक परिवर्तन का प्रतीक होता है, एक सच्चाई का प्रतीक होता है। और कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है हमारे जीवन का नियम ही है और जो भी बदलाव कहते हैं होता है वो अच्छाई के लिए हो, जो भी परिवर्तन हो वो भलाई के लिए हो। और कहीं ना कहीं जब माता रानी का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति की ओर चलिए हम बढ़ते हैं। आज नवरात्रि इस पावन पर्व का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा की कृपा जो है आप पर सदा रहे, और माता से बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो शांति से भर जाए और सभी लोग जो है सुरक्षित रहे, और माता रानी की कृपा सब पर सदा बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को इस अगली अंतिम भेंट के साथ हम समाप्त करेंगे। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। और अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। जय माता दी।

0: नमस्कार आशा,
1: सभी को नमस्कार। आइए सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया, जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लेकर निर्धारित किया

जाएगी। आगे कौन से कदम उठाने होंगे? कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकारी नेता ने सभी से देश में शांति और एकता बनाए रखने की मांग की। और अपने संबोधन में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कोलोवियो में हुई घटना का कड़ा खंडन किया, जहां एलोजीटो मां को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है, लेकिन एक की सजा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सरकारी नेता ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की मांग की, जो डर और दहशत के साथ साथ देश में तनाव को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने प्रेस वालों से जानकारियों की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद ही प्रसारण करने की अपील की और कहा कि जानकारी देने वालों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना भी है। और जैसे कि आप जानते हैं, आज दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक माध्यमिक स्कूल, सेंट स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट MITD, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर बंद रखे गए। फिर भी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट तक के छात्रों की परीक्षाएं जारी रखी गई। मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा में इसके अलावा पियर्सन एडेक्सेल की परीक्षाएं भी आज जारी रखी गई। कल कर्फ्यू के बावजूद भी कई लोग सड़कों पर उतर आए। देश के केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी हिंसक वारदातें पेश आई। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोम्बो आदि इलाकों में कई लोग सड़कों पर उतरे। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए और दुकानें लूट ली गईं। आज तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और सूरज की पहली किरणों के साथ आज 6 बजे कर्फ्यू भी हटा दिया गया। विदेशी समाचारों में वाटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोप लियो 14 को लंग कैंसर हो गया है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। खतर वर्षीय पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में 90 मिनट तक सर्जरी की गई। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। News on MBC Play and MBC.mu. Radio Mauritius. 800 kilohertz par ye hai Radio Mauritius. Radio Mauritius. Radio Mauritius. Shamme Farooza.

क्या जो चीजें तुम्हें यहां मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलो, और हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते।

वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज्यादा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वाले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।

कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है।

क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूं।

और बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है।

देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो और तराजू सीधी रखकर तोला करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और मुल्क में फसाद न करते फिरो और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया।

वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो और तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो

और ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर इसका इल्का किया है ताकि तुम लोगों को खबरदार करते रहो, और इल्का भी फसीह बलीग अरबी जबान में किया है, और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है।

और क्या उनके लिए यह सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी न मानते। इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया, वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें इसको नहीं मानेंगे। वो अजाब इन पर नागहां आ वाके होगा और इन्हें खबर भी ना होगी। उस वक्त कहेंगे क्या हमें मोहलत मिलेगी।

0: तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं?
1: भला देखो तो, अगर हम इनको बरसों फायदे देते रहें, फिर इन पर वो अजाब आवाके हो जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो जो फायदे ये उठाते रहे इनके किस काम आएंगे? और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए खबरदार करने वाले पहले भेज देते थे ताकि याद दिला दें, और हम जालिम नहीं हैं।

और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए, ये काम न तो उनके लायक है और न वो इसकी ताकत रखती हैं। वो तो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं।

करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे आमाल से बेताल्लुक हूं, और उस गालिबो मेहरबान पर भरोसा रखो जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है, और नमाजियों के साथ तुम्हारे रुकू और सुजूद को भी देखता है। बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है।

तो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को मत पुकारना, वरना तुमको अजाब दिया जाएगा। और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो, और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए हैं उनसे तवाजों से पेश आओ। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी

क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं।

0: और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाती हैं।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद को हमारे दिलों का नूर, हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई और आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आमीन। मौजूद सामीन, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। आसमान की बुलंदियाँ, समंदर की गहराइयाँ, हवाओं का चलना, बादलों का बरसना, सब उसी रब की कुदरत के मज़ाहिर हैं। बारिश अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। जब बारिश के कदरे ज़मीन पर बरसते हैं तो खुश ज़मीन में ज़िंदगी की नई बहार आ जाती है। वही खुदा है जो बादलों को चलाता है, वही खुदा है जो बादलों को चलाता है, वही खुदा है जो रहमत की बारिश बरसाता है, वही खुदा है जो रहमत की बारिश बरसाता है।

लिया, यानी ऐसे लोग जो इसलाह चाहते हों, ना कि ऐसे लोग जो पहले से किसी एक फरीक के वकील बने बैठे हों। तफसीर बगवी में इमाम बगवी इस आयत की तहत लिखते हैं, हकमैन के जरिए इसलाह की कोशिश करो, यानी दोनों तरफ से उनके जो है उनके दोनों हाकिम हों और उनकी तरफ से इसलाह की कोशिश करो तो यकीनन इसलाह होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न मुआशरत का जो हुक्म बीवी के साथ रखा, कुरान मजीद में फरमा वाशिरु हुन्न बिल मारूफ, और उनसे अच्छा बर्ताव, उनसे के साथ बसर करो, अच्छे साथ अच्छे के साथ रहो, मारूफ अंदाज से रहो, खूबसूरत अंदाज से रहो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन करीतुमुहुन्ना फ़आसा अन तकरहु शैयं वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, अगर वो तुम्हें नापसंदीदा हो तो करीब है कि एक चीज़ कोई नापसंद करो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए भलाई रखे। इस हिकमत बालिगा की तरफ भी देखो कि जो चीज़ हमें नापसंद है ज़रूरी नहीं कि वह हमारे लिए ख़राब हो। हमारा जितना इल्म था, जितना नॉलेज था, जितनी हमारी बसीरत और बसारत थी, हमने उसकी रोशनी में देखा, लेकिन अल्लाह फरमा रहा वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसमें लिए तुम्हारे लिए भलाई रखी हो। ये आयत करीमा अज़वाजी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, अगर इंसान पढ़े और समझे। हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं। अगर शोहर हर छोटी खामी पर तलाक के बारे में सोचने लगे और बीवी शोहर की हर गलती को नाकाबिले बर्दाश्त समझने लगे तो कोई घर बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम हमें सब्र, हिकमत, हुस्न मुआशरत और खैर के पहलू तलाश करने की तालीम देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों के साथ अच्छे बर्ताव करने को फजीलत करार दिया और बताया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आफीफा राहत मुस्तफ़ा, हजरत सैयदना आफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस सुनिए और इस पर अमल की कोशिश कीजिएगा, बहुत मुख्तसर हदीस है लेकिन ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। हर उस आदमी के लिए जो घर का मर्द हो, हर उस फर्द के लिए ये पैगाम मुस्तफ़ावी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो एक ऑक्सीजन का काम करता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वाना खैरुकुम लि अहली, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। जामे तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। पता ये चला कि हमारी नेकी का मियार सिर्फ मस्जिद और मिंबर और बाजार और मार्केट और ऑफिस में नहीं होना चाहिए। हमारी इबादत ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में जा कर के बहुत एहतमाम के साथ, तसन्नो के साथ, और जनाबे वाला लोग देख रहे हैं और पूरा एकदम अच्छा इंसान बन कर के पेश हों, लोगों से बात करें वाह वाह जी क्या बढ़िया आदमी है, अपने ऑफिस में जाएं तो ऑफिस के छोटे बड़े से वाह वाह क्या बढ़िया आदमी है अपने मात। लेकिन बेहतरीन आदमी वो है जो अंदर भी बेहतर हो और बाहर भी बेहतर हो। लेकिन वही अच्छे इंसान, वही हजरत जो मस्जिद में बहुत अच्छा जुब्बा और खुशबू लगा करके जनाब नमाज पढ़ लेते, जैसे ही घर में आते हैं, बच्चों और बीवी के सामने होते हैं, तो वो इस नहायत बदअखलाकी के साथ और इस बदतमीज़ी के साथ और इस गुस्से के साथ पेश आते हैं, घर वालों को, बीवी और बच्चों को लगता है कि ये इतना जल्लाद और जालिम आदमी है, तो वो आदमी बेहतर नहीं है। हुजूर ने फरमा खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, बाहर बेहतर होना अच्छी बात है लेकिन बाहर की बेहतरी तभी कामयाब है जब वो अपने घर में बेहतर हो। जनाब अपने घर का माहौल अच्छा रखो, पाकीज़ा रखो। बच्चे जब मिले तो बच्चों को लगे हमारा बाप है, बीवी मिले तो उसे लगे हमारा सर का ताज है, वालिदैन मिले तो लगे हमारी औलाद है। जो घर में बेहतर हो, जो अपने घर के लिए बेहतर नहीं है, वो मुआशरे के लिए कैसे बेहतर हो सकता है? ये फ़कत एक दिखावा हो सकता है, और इस्लाम ने दिखावे को, रियाकारी को शिर्क के जुमरे में रखा है। लिहाजा इस गंदे और घिनौने गुनाह से हमें बचना चाहिए। और हम अपने घर में भी जैसे बात करें तो जब मुंह खोलते हैं घर में तो ऐसे जैसे फायर की तरह आग निकलती है, नहीं, जब हम अपने घर में

मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला के नेक बंदों की ज़िंदगियां हमारे लिए तक्वा, इबादत, आजिज़ी और ख़िदमत खल्क का बेहतरीन नमूना है। इन्हीं अजीम बुजुर्गों में एक जलीलुल क़द्र हस्ती हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिन्हें गौसे आज़म के लक़ब से याद किया जाता है। आपकी तालीमात में अल्लाह ताला की बंदगी, शरीयत की पाबंदियाँ, सच्चाई और नेकी की बड़ी अहमियत है। औलिया की मोहब्बत दिलों का नूर है, औलिया की मोहब्बत दिलों का नूर है, उनकी नेक तालीमात से ज़िंदगी मामूर।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार की नमाज का पाबंद बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालदैन को सेहत व सलामती अता फरमा, बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा और परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा और हमें और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

की पसंद। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। श्रोताओं नमस्कार, आदाब और जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ, जी हाँ, और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, आपका मनपसंद प्रोग्राम। नंबर है 4028085408085, और मैसेजेस ज़रूर आप भेज सकते हैं। और जय माँ दुर्गा और आपके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ लेकर आए। मैं हूँ उषा कौर, साथ दूंगी 4 बजे तक आपकी पसंद प्रोग्राम में, जहाँ नगमे होंगे आपकी पसंद के। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं आज का पहला गाना हमारे सभी भक्तों के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ दोस्तों, हर गीत का अपना अंदाज, हर धुन का अपना एहसास। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का एक और प्यारा सा नगमा, और ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा।

तुम जाने पहचाने लगते हो। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा गाना हम सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में। और चलिए, यहाँ पर कहते हैं ना, हर गीत बस ऐसे ही खूबसूरत है अपने अपने अंदाज में। 4028085 जी हाँ फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कारो आकाशिया। जी हाँ विक्रम जी, अगला गाना जाता है आपके लिए और हमारी तमाम सुनने वालों के लिए।

आपकी पसंद। ऐ दिले नादान, जहाँ संगीत का साथ हो तो हर सफर भी सुहाना लगता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला गीत जो है वो भी बहुत ही खास है, और गाना हम चलाएंगे लीला जी के लिए, जो इस समय हमें सुन रही हैं फ्रॉम बशेरी, और गाना वो मांग रही हैं, और साथ में हमारे तमाम सुनने वालों के लिए लगान फिल्म से लिया गया।

दोस्तों उम्मीद है ये नगमे आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और ये गाना जाएगा खासकर सिमला जी के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम बेलरोज, और गाना खासकर उनकी बहन रूमा और आरती और साथ में बहन इंदिरा, भाई राकेश, धीरज, बेटा है नमलेश और बहू जो है कीर्तिना। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: दोपहर के 3 बज रहे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले कुछ दिनों की बाधाओं के बाद आज बुधवार को आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गई, ये जानकारी एमसीसीआई की महासचिव दृष्टि सिंह रामदीनी ने दी। हालांकि उनके अनुसार फिलहाल नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगी। लेन देन में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि गतिविधियां लगातार जारी रहने से इस देरी की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने मांग की कि कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति खाद्य ऑपरेटरों और कृषि खाद्य क्षेत्र के कारोबारियों को भी दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र 24 घंटे काम करता है। नवरात्रि के अवसर पर मॉरिशस के कई मंदिरों और संस्थाओं में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जा रही है। कैटरबोन में 2 अलग अलग स्थानों पर रात के विशेष समय में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी मां दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। ये आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें मां दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। वहीं बासेन रोड स्थित काली मां मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। और मंगलवार हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फ्रांस भर में 10,000 लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हाई स्कूल के छात्रों के समर्थन में रैलियां निकाली। ट्रेड यूनियनों के अनुसार इन प्रदर्शनों में लगभग 4,80,000 लोग शामिल हुए। स्कूलों की स्थिति और पुलिस की कथित हिंसा को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच ये आंदोलन तेज हो रहा है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं शनिवार को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के विरोध में भी प्रदर्शनों की योजना है। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर निर्मा के साथ।
2: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं।

0: हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर लड़ाई बंदी भंग करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्ते। News on NBC Play and NBC.MU.
1: एक शोक समाचार सुनिए। कांटों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज में रेलरोड कांटों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज में 79 साल की 79 years old की कुमारी जयवंती मनबोदोना जिन्हें सतवंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके घर राय रोड कौतों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: आपकी पसंद।
1: तीन बजकर पांच मिनट हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ है और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। जी हाँ, आज बुधवार 14 अक्टूबर 2026 और आजकल हम मना रहे हैं नवरात्रि। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी शुभकामना के साथ चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का अगला नगमा। मैं उषा कौर आप लोगों के साथ जी हाँ 4 बजे तक हम साथ देंगे और यहाँ पर हमें सुन रही हैं सुदेवी जी। चलिए आपके लिए गाना हम चलाएंगे आपकी मांग पर और आप सुन आप रहती हैं वाक्वा। गाना खासकर आप मांग रही हैं दीदी ललिता, कुशल फैमिली और दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालेंगा के याशना, नीरज, रामरतन, कुआहू परिवार, रिडोई परिवार, राघुबर परिवार और साथ में है जालू परिवार। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं विश्वानी जी, दुमन आप भी रहती हैं वाक्वा। और जो गाना आप मांग रही हैं आपकी बहन इंदिरा, बहन शारदा और सहेली जो है नीला प्रतिभा, शोभा, गीता गजाधर के लिए और गाना उन सभी लोगों के लिए जो इस पावन अवसर को मना रहे हैं, तो चलिए शुभकामनाएं आप सभी को।

0: आपकी पसंद
1: प्रोग्राम है। जी हाँ, आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में अमन, एकता और खुशहाली बनी रहे। तो चलिए, यहाँ पर हमें सुन रहे हैं रिहाना जी फ्रॉम नोथोडाम, और वो गाना मांग रही है माला फाउडा सुरेखा और शहनाज तुआबाली के लिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं। चलिए लता जी की प्यारी आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: तीन बजकर 19 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है प्रेमिला जी फ्रॉम काठरबोन। गाना वो मांग रही है अपने लिए और हमारे तमाम भक्तों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं साथ में अनीता जी फ्रॉम फिकाउ फ्लक। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं अनीता जी फ्रॉम रोजेल और गाना वो मांग रही हैं अनीता के लिए रियान शविदेश कृष्णा कियान फियान और हमारे सभी MBC स्टाफ के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपको।

0: की पसंद।
1: दोस्तों कहते हैं अच्छे गाने कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उनसे जुड़ी यादें हमेशा नहीं रहती हैं। और सुनिए अगला गाना, सदाबहार नगमा, फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसी फिल्म का एक खूबसूरत गाना हम चलाएंगे। विष्णु देव जी

के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम गोम्बे, और वो गाना मांग रहे हैं सीनियर गोम्बे के सभी सीनियर सिटीजन्स के सदस्य के लिए। तो चलिए गाना चल पड़ा महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

3:30 बज चुके हैं, आपकी फरमाइश, आपकी पसंद और आपका अपना कार्यक्रम पेश है। अगला गाना सिर्फ आपके लिए, तो चलिए ये गाना दिए जलते हैं किशोरदा की आवाज़ में, लाखों में एक। और ये पॉपुलर गीत खासकर शफिक जी के लिए, वो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम सैपिया। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको, और गाना आप मांग रहे हैं आपके लिए और साथ में हमारे तमाम सुनने वालों के लिए।

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

3:35 हुए हैं दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला गाना जो है उर्मिला जी के लिए, वो हमें सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप, साथ देने के लिए धन्यवाद आपको। और गाना जाएगा आपके लिए और साथ ही साथ में अक्षय और रीना के लिए जो रहते हैं बासर रोड का ठुबोन, हेमलता की आवाज़ में।

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

चले दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर, जी हाँ, बहुत सारे लोग गरबा डांस करते हैं, गरबा खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमें सुन रही है शिवरानी और उनकी सहेलियों जो है देवीना, अशना, रूपा और माधवी के लिए। और चलिए, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गाना चल पड़ा

चलिए श्रोताओ, अगला गाना जाएगा इंदिराज के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम मेबर्ग, और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, नवरात्र की खुशियों और भक्ति के रंग में रंग जाए, और साथ ही आप इस गीत का मज़ा लीजिए। और इसी गीत के साथ हम बरेंगे 4 बजे, इसके बाद आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शीर्ष के साथ, और मैं उषा कौर आप लोगों से मिलूंगी शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ रेशमा बालगोबीन बासेनू, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान सीजन 2026-2027 फॉर फ्रूट प्रोटेक्शन। इस समय मॉरिशस में फल के फूलने का मौसम

मौसम चल रहा है, जैसे कि लीची, आम, लौंगान और स्ट्रॉबेरी। और जैसे आप सब जानते हैं, इस मौसम में शोवसूगी, जिसे हम बड़े बैट्स कहते हैं, के हमले से काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए इन नुकसानों को कम करने के लिए हमें अपने फलों को इन जानवरों से बचाना ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एंटी बर्ड नेट लगाना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड फिशरीज सभी ऑर्चर्ड के मालिक को और आम जनता को सूचित करता है कि फ्रूट प्रोटेक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान 2026-2027 की वैलिडिटी पीरियड 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 6 नवंबर 2026 तक है। ये प्लान इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को एंटी बर्ड नेट खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिले, ताकि वे अपने फलों को चिड़ियों और बैट्स से बचा सकें। हर बेनिफिशरीज को नेट के कॉस्ट पर 50% सब्सिडी मिलेगा। आपको बैकयार्ड के लिए मैक्सिमम 5 पेयर के लिए और कमर्शियल ऑर्चर्ड के लिए आपको 60 पेयर तक मिलेगा। ये सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर ही चलेगा। ध्यान रहे, हर बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन दे सकता है। आपको नेट्स तब लगाना चाहिए जब आपके फल का साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया हो। इस सहायता जो फाइनेंशियल एड है का लाभ लेने के लिए आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड की कॉपी, एक रिसेंट CWA या फिर CEB का बिल प्रूफ के रूप में, और अगर ऑर्चर्ड हैं तो आपको प्रॉपर्टी टाइटल का प्रूफ भी अपने साथ लेकर आना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर फागे के वेबसाइट पर भी मिल सकता है। आप फागे के ऑफिसर्स में अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और अन्य एप्लीकेशन डालने के लिए आप फागे के ऑफिसर्स में संपर्क कर सकते हैं। आप इन दिनों में और इन जगहों में फागे के ऑफिसर्स में जा सकते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आप जा सकते हैं इन जगहों में। मापू मॉडल फार्म, फ्लैक मॉडल फार्म, रिविया डेज एंगी मॉडल फार्म, प्लेजेंस मॉडल फार्म, वाक्वा सब ऑफिस या फिर आप सेंट पियर एक्सटेंशन ऑफिस पर भी जा सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इसके साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समापन होता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नज़दीक फागे ऑफिस से संपर्क करें। आपके ध्यान के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको शुभ रात्रि।

5:17 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, और सबसे पहले आप सबको जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम अंताक्षरी, जहाँ सुरों की मस्ती होती है और गीतों की बहार होगी और पुराने नए गानों के साथ यादों का एक खूबसूरत सफ़र। नवरात्रि के इस पवित्र समय में माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं। और आज हम अपने प्यारे देश मॉरिशस की सुरक्षा और शांति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे और हर नागरिक अमन के साथ जीवन बिताए। तो चलिए, आज का जो विषय है, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि विषय कौन सा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आज हमारी प्यारी उषा जी अकेली है। जी हाँ, हमारा जो रोशन भाई है वो आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में सोचते हैं और वो ज़रूर आप लोगों को सुन रहे हैं। नंबर है 4028085402808 और विषय क्या है? आपको महान कलाकार अभिनेत्री के बारे में एक गाना है। जी हाँ, उनका नाम है हेमा मालिनी, क्योंकि 16 अक्टूबर को हम उनका जन्म दिवस मनाएंगे, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए, जल्दी जल्दी आप नंबर घुमाएं और हमें फ़ोन कीजिए, हमें आप लोगों का इंतज़ार है।

0: कॉल आ रहे हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हेलो, जय माता दी आप दोनों को। मैं
0: हम
1: सरिता हूँ कैथरबोर्न से।
0: जी हाँ
1: जय
0: सरिता जी,
1: जी, नवरात्रि की
0: नमस्ते।
1: शुभकामनाएं।
0: आपको भी
1: शुभकामनाएं आप
0: और
1: दोनों।
0: भाई रोशन तो नहीं है वो, लेकिन आपको सुन रहे हैं।
1: जी, उनको
0: चलिए
1: भी।
0: सरिता जी, विषय आपने सुना?
1: जी नहीं सुना,
0: अच्छा जी,
1: हेमा मालिनी आपने कहा।
0: जी हाँ, एक गाना आपकी पसंद और एक गाना हेमा मालिनी पर।
1: मेरी पसंद, ओके, मैं माता पर गा सकती हूँ।
0: गाइए।
1: माता ओ माता, जीवन की दाता, महिमा तुम्हारी अपार, मैया तुम सबकी पालनहार, ओ मैया तुम सबकी पालनहार।
0: ओके सरिता जी, बहुत धन्यवाद। अब एक
1: जी
0: गाना गाइए हेमा मालिनी पर।
1: जी

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको सरिता जी, मिलते हैं
1: धन्यवाद आपको भी,
0: अगले सप्ताह। धन्यवाद, शुभ शाम
1: धन्यवाद,
0: आपको।
1: बाय बाय।

0: आपको कहीं देखा है, आपको कहीं सुना है, और यहाँ पर देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: नवरात्रि अभिनंदन, जय माता दी।
0: जय माता दी। अमृता जी, हमारी प्यारी अमृता जी जो रहती हैं ओकुले, है ना। आप कैसी हैं?
1: धन्यवाद। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: हम तो बिल्कुल ठीक हैं। चलिए,
1: माता की कृपा हम सब पर बनी
0: हम
1: रहे।
0: सब पर, जी हाँ। तो चलिए, आप हमें सुनाइए पहला गाना।
1: हेमा मालिनी पर।
0: ओके।

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द अमृता जी।
1: के बीच शुभ नमस्कार, नवरात्रि अभिनंदन,
0: धन्यवाद, बाय बाय,
1: शुभ रात्रि,
0: शुभ
1: त्योहार,
0: शुभ त्योहार आपको भी।

0: के बारे में जिन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है, और उनकी अदाकारी, नृत्य और यादगार फिल्मों ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोग साथ दे रहे हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: जय माता दी। उषा जी,
0: जय माता दी। आशा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। और चलिए आशा जी, सुनाइए पहला गाना।
1: हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
0: शुभकामनाएं आपको भी।
1: और पहला एक भावगीत देना चाहूंगी।

जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली अधिकारा अदाकारा हेमा मालिनी।

0: आप हैं हमारे दीदी पर।
1: तूने रंगीली कैसा जादू किया, तूने रंगीली कैसा जादू किया, पिया पिया।

0: बोले मत वाला जिया।
1: चले, बहुत धन्यवाद आपको आशा जी।
0: संध्या और जय माता दी।
1: जय माता दी।

0: जी हाँ प्यारे दोस्तों, नवरात्रि हमें आस्था, शक्ति और अच्छाई की जीत का संदेश देती है। और चलिए, अच्छा लग रहा है कि आप लोग माँ पर गाना सुना रहे हैं और हम देखेंगे यहाँ पर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते। आपका नाम?
1: कैसे है उषा रानी?
0: हम बिल्कुल ठीक हो, माला फाउडर। सही पहचाना, क्योंकि आप ही है जो हमेशा हमें उषा रानी कहकर पुकारती है।
1: मेरा भैया कहाँ है?
0: आपका भैया वो तो यही कहीं है, आपको सुन रहे हैं।
1: सुन रहे हैं ना?
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में आप?
0: अच्छा, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है ना?
1: हाँ, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है।
0: चलिए, आप अपनी सुरीली आवाज सुनाइए माला जी।
1: तो सबसे पहले मैं आपको जय दुर्गा माँ कहूंगी। जल्दी से ये सब मुश्किल जो पड़ रहे हैं हमारे देश में, वो खत्म हो जाएंगे माँ की शक्ति से। और फिर मैं एक बहुत सुंदर गाना सुनाने जा रही हूँ आपको।

0: चलिए माला जी, बहुत बहुत सुंदर आपकी आवाज़ और ये जो गाना है बहुत ही लाखों में एक है। और यहाँ पर चलिए सुनाए दूसरा गाना।
1: आवाज आवाज थोड़ा मार खा गई है
0: नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत ही सुंदर है आपकी। चलिए आप सुनाइए
1: अब क्या सुनाना है?
0: दूसरा गाना, सुनाना है ना
1: इन्हीं हेमामालिनी के
0: जी।
1: फिल्म है ना?
0: हाँ, दो गाने आप गा सकते हैं, एक आपकी पसंद

0: और एक
1: ओके
0: हेमा मालिनी पर आपने गा लिया ना,
1: हाँ
0: तो अगर आप चाहते तो एक और गाना आप गा सकती हैं हेमा मालिनी पर।
1: हवा के साथ साथ
0: अरे अरे अरे
1: अरे घटा के संग संग
0: संभल ना
1: संभलना, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, तू मुझे लेके साथ चल, तू आँखों में साथ चल, तू जरा संभल, तू मुझे याद नहीं आ
0: चले, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्कार
1: नमस्कार भैया को नमस्कार कर
0: जी।
1: दीजिएगा। ओके।

0: जो न जाने क्या हुआ, लता जी की प्यारी आवाज हम सुन रहे थे। चले यहाँ पर कौन है? हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: संगीता, संगीता मोडालबिया,
0: मोडालबिया के रहने वाली संगीता जी। लगता है आपको हेमा मालिनी बहुत पसंद है ना? चलिए संगीता जी, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
1: आपको भी, आप सब लोगों को।
0: हाँ जी, तो सुनाइए पहला गाना।
1: क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर

0: हर सपना अब सच्चा लगता है, याकूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती
1: जी
0: है।
1: हाँ, बड़ी
0: ये
1: सुंदर
0: धर्मात्मा
1: दिखती।
0: फिल्म के हैं ये,
1: हाँ
0: मैंने
1: जी,
0: से
1: चलिए सुनाइए दूसरा गाना।

मांगे तुझसे मालिक एक संतोषी गदा, कि घर घर में खुशियाली हो, सदा सुख की

0: तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोषी का दान।
1: बिल्कुल, जय जय माता दी। बहुत धन्यवाद आपको संगीता जी, मिलते
0: आपको
1: हैं
0: भी
1: बहुत जल्द। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: नमस्कार, शुभ रात्रि आपको।
1: जी हाँ श्रोताओं, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि हमारे देश मॉरिशस में हमेशा शांति सुरक्षा बनी रहे। तो चलिए, सुरों की महफिल हम जारी रखते हैं और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो
2: हेलो, जय माता जी।
1: जय माता दी, मीनाक्षी
2: जी और रोशन जी भी।
1: जी
2: कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं जी, और आप कैसी हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: चलिए मीनाक्षी जी, सुनाइए पहला गाना आपके पसंद और दूसरा गाना हेमा मालिनी पर।
2: ओके, तो आज मैं नाइंटीज नहीं गाऊंगी।
1: अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी, चलिए सुनाइए।

0: बहुत ही सुंदर सा जो क्या बोलते हैं गमक किया आपने ये जो गमक है
1: जी
0: बहुत ही सुंदर है। चलिए
1: हाँ, मुझे
0: आपकी
1: भी
0: आवाज़
1: पसंद है।
0: बहुत ही
1: थैंक
0: प्यारी है मीनाक्षी जी, दूसरा
1: यू
0: गाना
1: जी।
0: सुनाइए।

0: की आवाज तो वाओ फिर भी मेरा मन प्यासा है। बहुत ही सुंदर, ऐसे ही आप गाते रहिए हमेशा, और माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा। धन्यवाद, जय माता दी,
1: जय माता दी।
0: जी दोस्तों, कुछ ऐसी आवाज़ें होती है कि हम सुनने को पसंद करते हैं, और हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन है। हेलो,
2: नमस्कार उषा जी।
0: नमस्कार
2: हरीश।
0: हाँ जी,
2: और मैं भाई रोशन को सलाम भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम
0: जी,
2: आपके प्रोग्राम।
0: हाँ जी।
2: तो मैं पहला गाना हेमा मालिनी पर ओके। ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया।
0: चले, वादा निभा लिया आपने पहला गाना सुना के। अब दूसरा गाना सुनाइए।
2: हमेशा की तरह एक सुनू निगम।
0: हाँ क्यों नहीं, चलिए सुनाइए।

0: आपके प्यार में ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में।
1: आपके प्यार ने ऐसा दीवाना बना लिया कि हम क्या कहें।
0: रोमांटिक मैन।
1: अच्छा, रोमांटिक।
0: थैंक यू
1: बहुत
0: थैंक
1: धन्यवाद
0: थैंक
1: आपको। हंसते मुस्कुराते
0: यू। जय
1: रहिए।
0: माता दी। बाय बाय।
1: धन्यवाद। जय माता दी।

0: प्यार किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन है? हेलो
1: हेलो उस्ताद जी।
0: हाय हाय, हमारी प्यारी सी कविता जी, कैसी हैं आप?
1: आप भी पहचान लिया
0: आपकी जो हंसी है,
1: रोशन भाई पहचानते हैं।
0: हाँ, हम हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि ये जो आपकी हंसी है ना, लाखों में एक है। चलिए सुना, ये पहला गाना है एक आपकी पसंद, और दूसरा गाना हेमा मालिनी पर।
1: पहला गाना माता पर ना
0: जी,
1: मुझे पता नहीं किसी ने गा लिया है या नहीं। मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा गाना सुनाइए हेमा।

0: लेने पर।
1: दूसरा गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले,
0: हाँ इसका इंतजार मैं कर रही थी। उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो। चलिए करिए।
1: गप सप तो मैंने आपको देखा था बस में।
0: हाँ? मैं कहाँ थी?
1: बस में कार्बन में, पता नहीं आप है या कोई
0: नहीं,
1: कोई
0: नहीं, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। कविता जी, खुशी हुई आपसे बात करके, हमेशा ऐसे ही आप हंसते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, जय माता दी।

0: बदनामी से क्या होने वाला है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी, जय माता की।
0: जय माता दी, हमारी प्यारी अनीता जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: आप क्यों हंस रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ, आप क्यों हंस रही हैं?
1: आज लैंड मिल गए मुझे, कभी नहीं लैंड मिलता।
0: अच्छा जी, चलिए सुनाइए पहला गाना।
1: माता जी पर जी, तूने मुझे बुलाया।

0: माता पर हो गया जी।
1: माता पर हो गया एक का प्यारा गाना। चलिए दूसरा गाना
0: हाँ
1: आपकी पसंद, ये नहीं, हेमा मालिनी पर।
0: हेमा मालिनी पर जी।

चलिए, बहुत धन्यवाद आपको अनीता जी, हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। जय माता दी। होई रंगीले, तूने कौन सा जादू किया है?

0: लाइजिया, यहाँ पर कौन है? हेलो
1: हेलो उषा जी, मैं सुविता बोसों से बोल रही हूँ।
0: सुविता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आप?
0: हाय, सबसे पहले सुविता जी, रेडियो वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज।
1: कम नहीं, कम ही है, कम ही है।
0: नहीं नहीं, हमारे हमें प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, उसको बंद कीजिए अगर हो सके।

0: बंद कर दिया है।
1: चलिए ओके, अब बंद किया
0: ओके
1: है।
0: हाँ बंद कर
1: कैसी हैं
0: दिया।
1: आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी?
1: हम भी बिल्कुल ठीक है,
0: हाँ
1: टिक ठाक है। सुनाइए
0: जी
1: पहला गाना।
0: जी मैं गई माता दी, मैं शेरा वाली माता पर एक गाना गाऊंगी। ओके

0: हमारे द्वार पर। हम बस यही प्रार्थना करते हैं। और सुनाइए दूसरा गाना, हे ममालिनी पर।
1: हे ममालिनी पर एक पुराना गाना है।
0: हाँ जी
1: हाँ पुराना।

0: गई।
1: चलिए सुविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम
0: में नया जमाना का गीत है ये।
1: बहुत धन्यवाद। चलिए
0: मिलेंगे
1: मिलेंगे बहुत ही जल्द। जय माता दी।
0: जय माता दी।
1: शुभ शाम आपको।
0: शुभ शाम भी आपको।

तो दोस्तों कहते हैं ना, पुराने गानों की बात कुछ और ही है। इनके मधुर धुनें हमें बीते हुए समय में ले जाती है और अपनों की याद दिलाती है। तो आइए आज फिर से उन सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम आप लोगों के नाम और आपने भाग लिया बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गीत के साथ मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आप घर पर सुरक्षित रहिए, अपनों का आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों का ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात होगी शाम के 6:30 बजे रेडियो मनोरंजन पर दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को लेकर। तब तक आप इस खूबसूरत गाने को एंजॉय कीजिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए शाम के ठीक 6 बज रही है। चौदह अक्टूबर 2026 बुधवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के कुछ इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद कल रात फिर अशांति की घटनाएं हुई। पुलिस ने कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 15 नाबालिग शामिल हैं। 43 लोगों को आज अदालत में पेश करने के बाद फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कर्फ्यू को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, किन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है और जिन इलाकों में पाबंदी नहीं है वहां आने जाने के क्या नियम हैं। पुलिस प्रेस ऑफिस ने इन सवालों का जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों की अशांति के बाद देश में व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गई हैं। संस्थानें खाने पीने की चीजों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति देने की मांग की है। मॉरिशस में इन दिनों आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तेलुगु समुदाय भगवान वेंकटेश्वरा की आराधना में 40 दिनों का व्रत रख रहा है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत हो गई। वैशाली जिले में हुए इस हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी रहा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कर्फ्यू के बावजूद देश के कुछ इलाकों में कल रात फिर अशांति की घटनाएं सामने आईं। हालात को संभालने के लिए पुलिस को कई जगह कार्रवाई करनी पड़ी। इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में से 43 को हिरासत में रखा गया है। इन्हें आज अलग अलग जिला अदालतों में पेश किया गया और फिर से पुलिस सेल में भेजा गया। देश के कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद कल रात कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई, जिसमें देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में सरकार के फैसलों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: Nous avons gagné l'information de plusieurs sources concordantes qu'il y a un groupe d'immunes.
3: विभिन्न स्रोतों से जानकारियां मिली हैं कि इस हिंसा के पीछे कुछ लोग हैं जो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। उनका मकसद है देश में तनाव को बढ़ावा देना ताकि शांति और व्यवस्था भंग हो। पुलिस के अनुसार इन लोगों को ड्रग टेस्टर पैसा देकर ये काम करवा रहे हैं। वे खुद को पुलिस की कार्रवाइयों से खतरा महसूस कर रहे हैं। पुलिस को पता है कि ये लोग कौन हैं। पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस और SMF देश की एकता को भंग करने वालों के खिलाफ तैयार हैं। पुलिस ताकत सख्ती से पेश आएगी। कई झूठे वीडियो और मैसेजेस प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनसे और अशांति फैल रही है। मैं मीडिया से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की मांग करता हूँ कि वे अपनी खबरों की अच्छी तरह जांच करें। प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है शांति बनाए रखने में, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं है। मैं रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों से अपील करता हूं, चाहे वे राजनीति से हो या प्रेक्षक, कि वे अपनी बातों की गंभीरता पर ध्यान दें और परिणामों पर अच्छी तरह सोच विचार करें। अपनी बातें शांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि हर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून का पालन करते हुए प्रयोग करे। मैं सभी मॉरिशनों से कहता हूं कि पुलिस कर्मी भी मॉरिशन हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। एक पुलिस कर्मी ने एक ऐसी करतूत की जिसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए मॉरिशस के सभी पुलिस कर्मियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस जनता की सेवा के लिए है, वो अशांति फैलाने के लिए नहीं बल्कि हर एक मॉरिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। मेरा संदेश स्पष्ट है, हम आग लगाने वालों को पहचानेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। लोगों ने गैर कानूनी काम किया है, किसी को भी हमारे देश की सामाजिक शांति को भंग करने नहीं देना चाहिए।
2: कि बन ला पुलिस, सितो सिपन मोगिशन को मौजूद

0: Je tiens la famille pareil comme je. Je tiens les enfants, je tiens la poche. Oui, et non, haine la police qui fait commettre un acte impardonnable. Mais nous pas capable de rendre toute la police Maurice responsable. La police est au service de la population. Elle n'est pas là pour faire des ordres, elle est là pour assurer la sécurité chaque Mauricien. Mon message est clair et sans concession. Nous pouvons identifier les incendiaires, les gens qui peuvent agir contre l'intérêt de notre pays. Et je peux bien répondre. Les gens qui font un acte illégal pour subir des conséquences bien lourdes de cette action antipatriotique méritée. Pas les personnes attaquent notre tissu social et la paix dans nos pays.
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कल गुरुवार 15 और शुक्रवार 16 अक्टूबर को मॉरिशस के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नर्सरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले स्कूलों के साथ साथ तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र भी बंद रहेंगे। इनमें आईटेट, एमआईटीडी और एमआई की ऑनलाइन क्लासेस भी शामिल हैं। वहीं मॉरिशस, रोड्रिक्स और अगालिगा में इन दो दिनों के लिए तय ग्रेड 4, ग्रेड 5 और एनसीई की परीक्षाएं आगे के लिए टाल दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। हालांकि एससी और एचएससी की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं तय टाइम टेबल के अनुसार ही होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्कूल दोबारा कब खुलेगी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस बीच महिला समानता और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि कल गुरुवार 15 अक्टूबर को सभी नर्सरियां भी बंद रहेंगी। कर्फ्यू को लेकर लोगों के मन में कई सवाल। आखिर कुछ ही इलाकों में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, इस पर हम थोड़ी देर में एक बार फिर पुनः लौट कर आएंगे। पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद आज देश में व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी हद तक सामान्य हो गई हैं। मॉरिशस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के मुताबिक पिछले दिनों लेन देन में कमी आई है, लेकिन आर्थिक नुकसान का अभी सही अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। उन्हें उम्मीद है कि कामकाज जारी रहने से इस कमी की भरपाई होगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि खाने पीने की चीज़ों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस सेक्टर में 24 घंटे काम होता है। देश के कई इलाकों में पिछले दिनों से जारी तनाव के बीच एमएसएम नेता प्रवीण जगन्नाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज सुबह अपनी पत्नी कोबिता जगन्नाथ के समर्थन में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात पर ये प्रतिक्रिया दी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी कोबिता जगन्नाथ आज तीसरी बार पूछताछ के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंची। मामला फरवरी 2025 में छापेमारी के दौरान दो सूटकेसों से बरामद 114 मिलियन रुपए से जुड़ा है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में एफसीसी के अधिकारियों ने आज उनसे एक बार फिर पूछताछ की।
2: करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अफसरों ने कोबिता जगन्नाथ के साथ नए सिरे से पूछताछ की। फरवरी 2025 में माई हॉलीडेज लिमिटेड कंपनी के दो अधिकारियों के यहां छापे के दौरान जब्त किए गए 4 सूटकेसेस में पाए गए 114 मिलियन रुपए के मामले में ये पूछताछ की गई। तीसरी बार उनके साथ पूछताछ की गई है। उनके साथ उनके वकील भी थे।
3: L'enquête là fin avancé beaucoup, mais comme moi je disais, c'était une longue enquête. Nous pas pour finir les derniers jours, 2 sessions avant, une autre session aujourd'hui. Nous prenons encore dans les autres sessions travail. Que prenez la question que vous posez et Madame Jagnat pourrait venir.
2: दिन के दौरान वे एफसीसी के मुख्यालय से रवाना हुई। किसी और तारीख पर उन्हें फिर से बुलाया जाएगा।
1: एलर्जी तोमा की सेहत को लेकर राहत की खबर। उनकी हालात में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आ गया है और अब सांस लेने के लिए मशीन की मदद की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दी। वे रोजबेल

0: जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री का बयान, इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: La nouvelle m'a annoncé avant mon venir mon jeune médecin elle dit inassisé aujourd'hui il fallait assisé inassisé à ça pas venir dire moi qui comme dire ben besoin de photo pour montrer au public j'ai besoin de confiance qui peut assisé et j'ai besoin comprendre ben l'opération aussi dangereux aussi important que ça ou pas capable permettre n'importe qui sans là aller le micro devant lui pour demander comment tu te sentir et ça aspect qu'on appelle ça une confidentialité des patients et deuxième infection. Le visage comprend, il y a une grande opération. Le visage garde bien comment il était. Laisse-le finir par lui-même, quand il commence à causer, quand il commence à marcher. La public, et surtout son papa, son maman, et bien, je finis de dire qu'il nous cause à nos enfants, nous donne nos enfants, tout ça. Son Michel causé. Parce qu'il y avait une plus meilleure preuve que ça, si je ne pas trop nous. Mais là, voilà une bonne nouvelle qui est assisée. Tout ça, l'appareil est tiré, l'appareil est fait tirer.
0: अपनी किताबों के जरिए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा इन दिनों मॉरिशस में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीर राम गुलाम से मुलाकात की। शिव खेरा इस शुक्रवार एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा होगी। साह ओनो कुणाल गोजी, करुणा लालू।
2: लेखक, वक्ता और लीडरशिप के विशेषज्ञ शिव खेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पर आधारित अपनी पुस्तक यू कैन विन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते भेंट की। इस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के अनुसार युवा देश के विकास के लिए एक अहम ताकत हैं। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया ताकि भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सके।
3: There was a study done on 1,000 companies and it was found that 60% of these companies fired Gen Z within first few months of hiring. Communication skills, attitude, integrity, taking for granted, team spirit. People who have succeeded and they have sustained success and maintained goodwill, they've lived by this one principle, and that is, I shall always give more than what I get. To my family, to my organization, to my company, to my customer, and to my country. You live by this principle, you become the competition, you have no competition.
2: Shiv Khera is Shukravar, 16 October ko La Pirogue mein Mauritius Institute of Directors ki pehel par aayojit ek sammelan ka sanchalan karenge. जिसकी थीम होगी टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, द विनर माइंडसेट, यानी असफलताओं को वापसी की सफलता में बदलना विजेता की सोच।
0: रोजवेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जल्द ही करीब 100 डॉक्टरों और 60 इमरजेंसी स्पेशलिस्ट नर्सों की भर्ती की भी घोषणा की। डायबिटीज़ को लेकर मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर। देश इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत देश में इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मैगजीन द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक साल 2009 में डायबिटीज की दर 23.3% थी, जो 2021 में घटकर 19.9% रह गई। प्री डायबिटीज के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। खास बात है ये है कि महिलाओं में डायबिटीज की दर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
4: न्यूग्रोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिहाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तब से सभी इलाज करवा रहा हूँ, आँखों की जाँच आदि करवा रहा हूँ। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिर उजिया कहते हैं, अगर किसी को 8% से

0: ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9% तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्री डायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
1: Donc là aussi, nous trouvons une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
0: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता आपसा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। आपसा इंटरनेशनल की अध्यक्षा उद्रे अज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। समय रहते जाँच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
2: डायबिटीज़ को काबू में रखना और इससे होने वाली गंभीर परेशानियों से बचना, इसी मकसद से मॉरिशस में एक नई पहल शुरू हुई है। गैर सरकारी संस्था ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ लोगों को बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करेगी। लक्ष्य है साल 2035 तक डायबिटीज़ के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए संस्था स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी सेहत से जुड़ी ज़रूरतों को समझने के लिए अध्ययन भी करेगी। आत्मसंयम और मन की शुद्धि का एक पवित्र पर्व मॉरिशस में तेलुगु समुदाय इन दिनों भगवान वेंकटेश्वरा की आराधना में लीन है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप की उपासना के लिए श्रद्धालु 40 दिनों तक व्रत रखते हैं और पूजा पाठ के साथ अपने जीवन में अनुशासन और सादगी का पालन करते हैं। देश भर के मंदिरों में हर दिन प्रार्थनाएं हो रही हैं जहां भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वरा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। आस्था की ज्योत, भक्ति का संगम और नई पीढ़ी तक पहुंचती सदियों पुरानी परंपराएं। नवरात्रि का आज 4वां दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना का दिन। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस में भी इन 9 दिनों के दौरान मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में पूजा पाठ का वातावरण है। कैटरबोन में दो स्थानों पर रात के समय विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार दुर्गा पूजा के साथ युवा पीढ़ी को देवी मां की कथाओं और धार्मिक संस्कृति से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। ये परंपरा पिछले 47 वर्षों से चली आ रही है। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यह आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है जिसमें माँ दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। इस भव्य आयोजन की तैयारियाँ जून महीने से ही शुरू हो गई थी।
3: हम लोग बंगाल मतलब कलकत्ता के है, वेस्ट बंगाल, और हम लोग कलकत्ता में हमारे बड़े पूर्वज लोग आए थे, उसी परंपरा से ये दुर्गा पूजा चल रहा है। हमारी दुर्गा पूजा पूरा बंगाली विधि से, और दूसरी बात ये कि ये दुर्गा पूजा तंत्र शक्ति से और तंत्र विधियों से होता है। तंत्र विधि से मतलब ये कि हमारी जो देवी हैं, दुर्गा जो हैं, क्या वो महाकाली क्या वो दुर्गा जी हैं, वो सब तंत्र शक्ति से ही होता है। और इस शारद नवरात्रि में दुर्गा जी के हम लोग पूजा चंडी रूप में मानते हैं, मतलब कि चंडिका के रूप में। ऐसे दुर्गा माँ को सभी लोग माँ कहते हैं, लेकिन हमारे बंगाली परिवार में दुर्गा जी बेटी बन करके पिता के घर आते हैं।

अभी वो हमारे साथ रहेंगे दसवीं तक, फिर दसवीं के बाद वो अपने पति के घर में जाएंगे। तो जाने से पहले जितनी भी सेवा हो सके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं।

0: क्योंकि छुट्टी से लेकर आज तक हम माँ की सेवा करते हैं, और जैसे कि आपको पता है वो माँ के रूप नहीं आती, वो बेटी के रूप आती है, तो हम उसकी स्वागत धूमधाम से करते हैं और हर साल यही वेट करते हैं कि वो आए और हम उसकी सेवा करें।
1: सायंकालीन कार्यक्रम में पारंपरिक बंगाली ढुली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। युवा कलाकारों ने ढाक नामक पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच सुगंधित धूप से भरे पात्रों के साथ ये भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं बासे रोड स्थित काली माँ मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और माँ दुर्गा के नौ रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुँचाना है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति का पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है।
2: जो युवा जनरेशन बा ओकर मजा एनकरेज करना जैसा कि हमने के मजा आवे के संगे हम मूर्ति बनाए के हमने के गांव के मजा के रोशन करे के मंदिर के हमने के लास्ट जाता नौजवान जो अब उठता छाग मजा ई परंपरा स्वीप करे के।
1: दो स्थान आस्था की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि की परंपराओं को जीवंत रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।

0: नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना का दिन। भारत के मंदिरों में पूजा अर्चना और मां दुर्गा के जयकारों के बीच भक्ति का माहौल है। वहीं भव्य पंडालों में कहीं महाभारत के प्रसंग जीवंत हो उठे हैं तो कहीं दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों की झलक देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल तक आस्था, कला और संस्कृति के अनोखे रंगों के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है।
1: नवरात्रि का आज चौथा दिन समर्पित है मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली देवी माना जाता है। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की मान्यता है। मां के इस स्वरूप को शक्ति, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग मंदिरों में आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में भी नवरात्रि की रौनक है। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कोलकाता के सोल्ट लेक इलाके में इस बार महाभारत की कहानी जीवंत हो उठी है। इसी ब्लॉक के दुर्गा पूजा पंडाल को महाभारत के प्रसंगों के आधार पर सजाया गया है। कलाकारों ने इस प्राचीन महाकाव्य के दृश्यों को अपनी कला के जरिए फिर से पेश किया है। खास बात यह है कि यहां दुर्गा पूजा के आयोजन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा की तैयारी को एक कलाकार ने बेहद छोटे आकार में समेट दिया है। अगरतला के कला शिक्षक बिजॉय देवनाथ ने करीब 700 माचिस की तीलियों, आइसक्रीम की लकड़ियों और कागज की मदद से मां दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा तैयार की है। उनकी ये कला बेकार पड़ी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी पंडालों की सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ एक पंडाल को कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का रूप दिया जा रहा है। मंदिर की खास बनावट और ऊंचे शिखरों की झलक इस पंडाल में देखने को मिलेगी। अंकोर वाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अब केरल, जहाँ नवरात्रि की एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। इसे बोम्मई गोलू कहा जाता है। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों और रंग बिरंगी गुड़ियों को सीढ़ियों की तरह सजाया जाता है। कहीं 3, कहीं 5 तो कहीं 11 स्तरों पर सजी ये मूर्तियां पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन की झलक पेश करती हैं।

0: ये परंपरा कई परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है।
1: और सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि भारत के बिहार राज्य में एक दर्दनाक नाव हादसा, गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की जान चली गई। हादसा कल रात वैशाली जिले के रागोपुर इलाके में हुआ, जब करीब 20 लोगों को लेकर जा रही एक नाव नदी में पलट गई। सभी लोग एक गांव में भोज में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए आज भी बचाव अभियान जारी रहा। बताए मौसम के हाल की ओर। आमहालत मैस्कन के दक्षिण में पाया जाने वाला जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर बनाए रखा है। रात से कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और चट्टानों पर वर्षा होगी। दोपहर बाद में आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। विशेषकर दक्षिणी लगूनों में रात के दौरान समुद्र की स्थिति में सुधार आएगी। न्यूनतम तापमान सेंटर प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंटर प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:39 पर।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। धनी लेन सैपोल में 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमा देवी दोमा पैदाश्रम जूतन और जिन्हें अनुष्का के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके पति अनुप दोमा के घर सैपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। सुल्फिरिनो नंबर चार वाकुआ में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिंदुमती सिपरसाद पैदाशनाम रामानंद सिंह और जिन्हें मिला के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे जागीसर लेखराज सिंह के घर सुल्फिरिनो नंबर 4 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। राय रोड कांटों बेल्डो पॉम्पलेमूसेज में 79 ईयर्स ओल्ड की कुमारी जयवंती मनबुदुना जिन्हें सतवंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर कांटों बेल्डो पॉम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लेस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई में 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पवित्रा देवी बहुरन पैदाशनाम बेचू किशुनदयाल और जिन्हें सविता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे लाशा पेलौदों दिलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगाद की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। गुरुवार 15 अक्टूबर को दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्यूपिप में और आसपास के इलाकों में पपेनेसी रोड, रूट जॉर्डन, रू कोसिनी, रू रेमोनो, कॉलेज लेन, रू डॉक्टर एडवर्ड्स, रू विक्टोर लामोक, रू सगायतन जुवाल, rue Naz, rue Émile Sozier, rue Sir William Newton, rue Raffray, morcellement Piat, mais bhi bijli ki supply mein katauti lai jayegi. Aur सोलह अक्टूबर को दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्लोरियाल में और आसपास के इलाकों में Avenue King George, Avenue John Kennedy, Rue Roger Pesani, Rue Esquette Bell, Flat Silver Clouds, Flat Les Ternans, Résidence de l'Intendance, British High Commission, Flat Karimji, mais bhi bijli ki supply mein katoti lai jayegi. Shukravar 16 October ko सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक फ्लोरियाल में और आसपास के इलाकों में रू एनेस्ट आरेल, रू लुसियन दे शाजेल, फ्लैट हेस्केट हाइट्स में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 新的一天，听众朋友大家好，大家熟悉的声音又来了，我是张大威，今天准备了很多歌曲跟大家分享，希望今天的节目能给大家带来一些美好的陪伴。

819频道毛里求斯广播电台，这里持续播放好听音乐。

还是从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方，我要的幸福。

0: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से हम कर जोड़ अभिवादन करते हैं। मैं हूं रत्ना। आज के इस भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र के इस पावन पर्व में कुछ भजनों के साथ आइए मन को शांत करते हैं और ईश्वर की आराधना में लीन होते हुए गणेश भजन द्वारा आज के इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओं, आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर हम देखें तो नवरात्रि केवल बाहरी कर्मकांड या उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के रूपांतरण और आंतरिक ऊर्जा के जागरण का अत्यंत गहरा अवसर है।

नवरात्रि आंतरिक शक्तियों और अष्ट शक्तियों का जागरण करने का पर्व है। नवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई दैवीय शक्ति आदि शक्ति को पहचानना, देवी के नौ स्वरूप और उनके शस्त्र हमारे भीतर की कमजोरियों जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को समाप्त करने वाली आंतरिक क्षमताओं के प्रतीक हैं। श्रोताओं, नवरात्रि के नौ दिन जो हैं वो तीन तीन हिस्सों में बांटे गए हैं। पहले तीन दिन तमोगुण यानी सुस्ती, जड़ता और नकारात्मकता को हटाने के लिए, मध्य के तीन दिन रजोगुण यानी ऊर्जा, कर्मशीलता और मानसिक उथल पुथल को संतुलित करने के लिए, और अंतिम के तीन दिन सतोगुण यानी पवित्रता, ज्ञान और उच्च आध्यात्मिकता चेतना को धारण करने के लिए करते हैं।

नवरात्रि का ये पावन पर्व सभी के लिए ऊर्जनात्मक रहे और इन 9 दिनों में हम आध्यात्मिक तप के माध्यम से आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करें और यही शांति सभी में सदा विचरती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को बस हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक हमारा साथ दिया। ईश्वर सभी का कल्याण करे। सभी की मंगल कामनाओं को मन में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफ़िल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस मुख्तसर बज़्म में हमदोनात का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। इरशाद रब्बानी है, ए पैगम्बर, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर इसलिए उतारी है कि लोग उसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें और ताकि अक्ल रखने वाले नसीहत हासिल करें।

ए अल्लाह, हमें अपने बदन में आराम दे। ए अल्लाह, हमारे कानों को सलामत रख। या अल्लाह, हमारी नज़र को दुरुस्त रख। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बहवाला सन

हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन के जिस्म की हर तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म कर दे और उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। सामईन कराम, पिछले शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस समय मॉरिशस में रात की ठीक 9:04 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस।
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
4: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

देवी और सज्जनों, प्रिय श्रोताओ, आप सभी को अजय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमन स्वीकार। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। रात के 9:05 हो रही है। आज है बुधवार की रात, बुधवार 14 अक्टूबर साल 2026। और आजकल हम नवरात्रि मना रहे हैं। 9 दिनों और नवरात्रि तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों और नामों का गुणगान कर रही है। तुम कहेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो प्रिय श्रोताओं, दुर्गा नवमी के संदर्भ में विशेष एक विशेष कार्यक्रम दुर्गा महिमा अभी से लेकर रात के 10 बजे तक, और 10 बजे होगा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। तो चलिए एक साथ मिलकर हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं। शक्ति स्वरूपा है दुर्गा मैया। दुर्गा मैया से प्रार्थना करते हैं कि जितने भक्तों ने व्रत धारण किया हुआ है और जितने भी भक्त ने अपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना की है, तो आपकी पूजा, आपका व्रत सफल हो। जय माता दी, जय माता दी, जय अम्बे मैया।

नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है जिसमें माँ दुर्गा और उनके नौ दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है, नव यानी कि

नौ और रात्रि यानी कि रातें। नवरात्रि के नौ दिन माँ दुर्गा की शक्ति, भक्ति, साहस, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें शक्ति, सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और माँ दुर्गा के नौ रूप इस तरह से माँ शैलपुत्री, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री।

देवी और सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, हम आपको बताते चलें कि हमारे देश में 8:30 बजे से रात को अभी कर्फ्यू लागू है, कल सुबह के 5 बजे तक, यानी कि किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और बेशक आप जानते हैं कि इन दिनों कितने हिंसा से भरी घटनाएं हुई है, सो हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और कहते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना भक्त अपने तरीके से करता है, हर भक्त अपने तरीके से माँ की आराधना करता है, और माँ तो भक्ति की प्यासी है, और कैसे माँ की पूजा किया जाए। सो सुबह उठकर पूजा की तैयारी करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें, पूजा की जगह को साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं, माँ को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करें यदि उपलब्ध हो। पूजा की सामग्री है लाल फूल, दीपक और घी या तेल, अगरबत्ती या धूप, फल और मिठाई, रोली या कुमकुम, अक्षत और साफ जल, और इनमें से जो सामग्री उपलब्ध हो उसी से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और मन में कहें, हे माँ दुर्गा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद माँ को जल, फूल, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और माँ के सामने

ने घी या तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय माँ का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता दूर हो। दीपक और अगरबत्ती को सुरक्षित जगह पर रखें।

दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंत्र है, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वो साधिके शरणिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह माँ की स्तुति का एक प्रसिद्ध श्लोक है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 108 बार माँ का मंत्र का जाप कर सकते हैं। संख्या से अधिक मन की श्रद्धा महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। आप यह प्रसिद्ध आरती गा सकते हैं, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। आरती करते समय माँ का ध्यान करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। माँ को भोग लगाएं। माँ दुर्गा को फल मिठाई या घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन अर्पित कर सकते हैं, जो महाप्रसाद बन जाता है। और भोग लगाते समय प्रेम से बोले, हे माँ, मेरे द्वारा प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया भोग स्वीकार करें। कुछ देर बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें। अंत में माँ से प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने पर हाथ जोड़ कर कहें, हे माँ दुर्गा, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें कृपया क्षमा करना। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों को दूर करें। हमें अच्छे कर्म करने की बुद्धि दें और हमारे परिवार पर अपना कृपा दृष्टि डाले रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।

ऐसे माँ दुर्गा को हमारा शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है। और माँ दुर्गा जो है उसके बहुत ही दिव्य गुण हैं, और माँ दुर्गा को शक्ति, साहस, प्रेम, करुणा और धैर्य की देवी माना जाता है। माँ के नौ रूप हमें जीवन में अच्छे गुण अपनाने और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। और माँ दुर्गा केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि ममता, दया और क्षमा का भी प्रतीक है। करुणा और दया के सागर है दुर्गा माँ, और शक्ति

शक्तिशाली होना, माँ दुर्गा अपार शक्ति का प्रतीक है। वे हमें कठिनाइयों से लड़ना, कभी हार न मानना सिखाती है। माँ दुर्गा साहस और निडरता, माँ हमें डर का सामना करना और सत्य के रास्ते पर चलना सिखाती है। दया और करुणा के सागर है दुर्गा मैया। माँ अपने भक्तों के प्रति करुणामयी मानी जाती है। हमें भी दूसरों के दुख को समझना चाहिए। माँ दुर्गा ममता, माँ जैसा प्रेम दिखाती है, इसलिए से माँ कहते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को अपनी संतान के समान स्नेह देने वाली माता है। क्षमा की देवी है दुर्गा मैया। माँ के गुण हमें दूसरों की गलतियों को समझने और मन में द्वेष न रखने की प्रेरणा देती है। धैर्य, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। वे सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य धारण करना चाहिए। माँ सच्चाई का साथ देने वाली है। माँ दुर्गा को अधर्म और अन्याय का नाश करने वाली देवी माना जाता है और माँ का प्रेम हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना सिखाता है। माँ महागौरी शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाती है। बुद्धि और विवेक की देवी है दुर्गा मैया और माँ जो है शक्तिशाली देवी है। इस विश्व की माता है दुर्गा मैया, स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश माँ दुर्गा की पूजन करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कथा यह संदेश देती है कि बुराई और अहंकार के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। रक्त बीज और महिषासुर जैसे दानवों का नाश करके माँ दुर्गा ने धर्म की स्थापना की है। जय हो दुर्गा मैया, जय हो अम्बे गौरी।

माँ हमारे जो दानव गुण है उनका नाश करने वाली है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सरीय का नाश करती है। और माँ दुर्गा जो है उन्होंने बहुत से राक्षसों का नाश किया है, और राक्षसों में से महिषासुर, शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीज धूम्रलोचन। और दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो कभी भैंसे का रूप धारण कर सकता था। उनके अत्याचारों से देवता परेशान थे, तब माँ दुर्गा ने उसे युद्ध करके उसका वध किया। फिर शुंभ, शुंभ एक शक्तिशाली असुर था, माँ दुर्गा ने उससे युद्ध किया और उसका भी वध किया। निशुंभ, निशुंभ शुंभ का भाई था और माँ दुर्गा ने युद्ध में उसे हराया। फिर चंड, चंड शुंभ का सेनापति था, माँ के उग्र स्वरूप से उनका संहार हुआ। मुंड, मुंड भी शुंभ का सेनापति था, माँ के काली स्वरूप ने चंड और मुंड का वध किया। इसी कारण देवी को चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। फिर रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसके रक्त की बूंद धरती पर गिरने से उसके जैसे कई असुर पैदा हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण करके रक्त धरती पर गिरने से रोककर उसका संहार किया। और धूम्रलोचन शुंभ का एक शक्तिशाली सेनापति था, देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से उसका नाश किया। और माँ दुर्गा के रूप में वो महिषासुर का वध करती है, माँ चामुंडा के रूप में माँ दुर्गा चंद और मून का नाश करती है, और माँ काली के रूप में रक्त बीज का नाश करती है, और माँ चंडिका महागौरी के रूप में शुंभ और निशुंभ सहित अनेक असुरों का नाश करने वाली है। देवी के विभिन्न रूपों और असुरों की कथाएं का वर्णन देवी महात्य दुर्गा सप्तशती में मिलता है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं में कुछ विवरण भिन्न हो सकते हैं, पर माँ दुर्गा जो है उनके बहुत सारे गुण हैं। जो भी साधक, जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है।

प्रिय श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे विशेष कार्यक्रम दुर्गा नवमी के संदर्भ में दुर्गा महिमा। और आप माँ के भक्त हैं सो आपको जानना चाहिए कि माँ को क्या प्रिय लगता है। माँ के प्रिय फूल है लाल फूल, लाल गुलाब, गेंदे का फूल और कमल का फूल। और माँ दुर्गा के प्रिय रंग है लाल, पीला और नारंगी। और माँ दुर्गा को प्रिय भोग है, उनके प्रिय भोग है सेब और अन्य फल, खीर पूरी, रोट और लड्डू, नारियल, शहद, मिठाई, हलवा पूरी और चने। और नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर कई भक्त हलवा पूरी और काले चने का भोग भी लगाते हैं। और माँ दुर्गा को प्रिय पूजा सामग्री है लाल चुनरी, लाल फूल, घी का दीपक, कुमकुम और रोली, अक्षत यानी साबुत चावल और नारियल। इन सामग्री से अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। और माँ दुर्गा का प्रिय मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और माँ दुर्गा जो है, माँ की भक्ति में केवल फूल और भोग की महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे आचरण को भी बहुत महत्व दिया जाता है। सच्चाई, दया और करुणा, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान, अहंकार से दूर रहना, सभी के प्रति प्रेम रखना और अन्याय का विरोध करना। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूरे भक्ति के साथ अगर माँ का गुणगान करेंगे तो आप चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, माँ कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाती है। इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी है हमारी अम्बे मैया।

देवी और सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, इसी माँ दुर्गा के भजन के साथ ही नवरात्रि के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम दुर्गा महिमा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सो जितने भी भक्तगण हमें सुन रहे हैं, आपका व्रत सफल हो, आपकी पूजा सफल हो और यह नवरात्रि सभी के लिए मंगलकारी हो और हमारे देश में आजकल जो समस्याएं चल रही है वो समस्याएं दूर हो। हे अम्बे मैया, हम सब की रक्षा करो, हम सब पर दया करो। जय अम्बे माँ, जय अम्बे बा, जय माता दी। सो इसी भजन के साथ ही यह कार्यक्रम संपन्न होता है। 10 बजे हम प्रस्तुत करेंगे अगला प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन।

0: संगत चलो घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 10 बजे बाद तू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और प्रस्तुत बातलो के मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
5: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमर कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी

0: भोजपुरी तड़का।
1: सब संगत यालो क्या जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते। यह तो मन पसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन एगो एम मोड पर एगो एफएम मोड पर चला था। एफएम मोड पर है रेडियो मनोरंजन और आईएम मोड पर है रेडियो मॉरिशस। आज है बुधवार की रात 14 अक्टूबर 2026 भोजपुरी का प्रोग्राम अभी से लेके रात के 11 बजे रे तोरा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमैया और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत मांगिया जा। ये पहल का गाना रत्ना पदारत और बंधु भाई की आवाज में और गीत की बोल आंख मारीरा रेहाना हासी नानी के तेरे गीत चलता खासम खास आप रहे फिनिक्स कर सब संगत यार परिवार के नाम चलक साथ सुने हैं गीतवा आंख मारीरा।

संगठन लोग हमनी थोड़ा याद दिलाओ जैसा कि हमने के देश में कर्फ्यू लागल बा आज रात के 8:08 से काल फजीर के 5 बजे यानी कि कोई के ध्वनि बाबी घर से बाहर जाए के अगर पुलिस द्वारा पकड़

0: तुम्हारा पर लामान पे करके 50,000 और कई साल तक सकबत जेल बिता हुई भी ऐसा काम नहीं करिए जानते थे कि आजकल कौन चीज हुआ था अपने के देश में और बस मांग कर अब सकी ये सब हिंसा ये सब कमती हो जाए हमने के देश को सुंदर देश है तो नए चेहरा लड़ाई झगड़ा करके नए चेहरा हिंसा करके हमने के देश को बहु जातीय देश है मॉरिशस हमके पूर्वज लोग जयमनाई इलाका से आलो वंश और हमेशा से जब से हम छोटा है तब हम जानी ला कि हमने के देश में प्रेम की भावना है अपनापन और भाईचारा की भावना है तो ये भाईचारा प्रेम की चला हमेशा कायम रखेगी और बेशक कभी रात के समय भोजपुरी तर का प्रोग्राम सुने तो वह तगड़ा गीत तोहर खातिर जोली छोकरी और अभी को संगत या बकर से मिले चाहे हेलो और जब भी टेलीफोन कर मैंने राजो की बोली मैं कमती कर दिया प्लीज हेलो
1: हेलो
0: हाँ प्रमीला जी नमस्ते कैसे समाचार अगला गीत के कर खातिर प्रमीला
1: गीत खातिर सब परिवार खातिर
0: आज घरे भी रहला तो आजू के बोली माँ जोर बा प्रमीला प्लीज नहीं इको कर रहा था जाना था इको कर रहा था यहाँ पर ही हमने की डिफिकल्टी होला आले आले बोले आज के दिन कैसे बिताल प्रमीला
1: अच्छा
0: पूजा जा हुआ था दुर्गा माँ की आराधना हाँ अभी शिवाला में बुनेरी पूजा हो जाता ना कर्फ्यू के कारण
1: बहुत गर्मी थोड़ा देर हो गया
0: कहूँ कहूँ पर इसे 5 बजे से शुरू होता या सांझ के 8 बजे के पास 8 बजे के आधा से माँ माँ दुर्गा से प्रार्थना सब कोई आ जाए मॉरिशस में दुनिया भर में और सब कोई एक साथ हाथ जोड़ के माँ दुर्गा हे माँ दुर्गा सब बुद्धि ज्ञान द ताकि आदमी ऐसा काम नहीं करी हमने के देश ऐसा जोड़ी देश बा स्वर्ग जैसा देश हमने के देश हमने के देश बढ़िया चोरी बा हाँ नहीं तो आज कलयुग है ना प्रमीला का कर बा पर ऐसा काम नहीं करे कि चेहरा हमने माँ दुर्गा से बस सब कोई किस बुद्धि ज्ञान दे कि चल के उनके देश अभी फिर से
1: प्रार्थना करत है जाजे बीमार हो गए लंज के ऐसे हत्ता हो गए तो अच्छा हो यान
0: हाँ
1: ऐसा देजूद नहीं
0: हाँ जी हाँ हाँ प्रेमिला तगड़ा गीत तोहर खातिर तोरा सब परिवार के नाम
1: हाँ सुन हई गीत दाला सुनता है दुर्गा माँ के गीत
0: दुर्गा मैया अले चलाओ अब सर थोड़ी समय में अभी गीत क्लासिक होगा गीत के बाद आली डाल दी अब सब फिक्र नहीं करिए हाँ हे जगदम्बे मैया गौरी ब्रदर्स आली बहुत धन्यवाद और अगला गीत चलाते सर रिहाना जो नहर नथ दाम गीत और खाते तो सब परिवार के नाम राफिक मोहित हवन तायक से हेलो जी भाई अबू वाकवा से सुना थवन आत्माराम चाचा एक गीत और नाम ललिता कुशल चाची ललिता कुशल त्रियोले से हवन जा और हे गीत चली रीता सीतालू और रेणुका भैरव के नाम है दुगो बहिन बहुत प्यार से उनके सुना था वन और हे गीत चलावत इस संजय बिहारी और पत्नी और बेटा पत्र बेटी दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम और जी फैमिली के सब सदस्य लोग के नाम जो हबी हमने की रात के सुना था और हे गीत हमने चलावत इस सब जोड़ी जोड़ी छोकरी लोग के नाम और जो लड़का लोग आजकल एससी और एचएससी के एग्जाम्स कर रहा था खास कर गीत तोरो नाम जोड़ी छोकरी से प्यार कर रहा चल एक साथ सुना जा गीत तोरा

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

जगत जननी माता के आजकल हमने गुणगान करते सा हर घर में, हर मंदिर में, हर शिवालय में, गांव में, शहर में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मॉरिशस के हर एक कोना में माँ दुर्गा के गुणगान होता। कहे कि आजकल हमने नवरात्रि के व्रत धारण कर ले सर, नौ दिन और नौ रात ले माँ दुर्गा के पूजा करते। सबको अपन अपन तरीका से पूजा करेला, कोई मीठा खा के व्रत धारण करेला, कोई सब्जी खा के, कोई खाली पानी पी के व्रत धारण करेला। तो माँ दुर्गा सबके व्रत सफल करी और सबके पूजा सफल हुई। माँ हे दुर्गा मैया शक्ति दे ताकि हमने आगे बढ़ब सा और जीवन में कुछ न कुछ नया जरूर करब सा। और माँ दुर्गा जो अपन भक्त के पुकार अवश्य सुनीला। तभी प्रमिला कुछ समय पहले फोन करने रहन दुर्गा माँ के भजन मंगले वन, तो दुर्गा माँ के भजन चलावते सर सब भक्त जन लोग के नाम जो माँ दुर्गा के व्रत रख रहे हैं, नौ रात्रि और नौ दिन तक माँ के गुणगान करियन सर। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ पहाड़ा वाली, जय माँ शेरों वाली, जय हो।

रात के 10:20 हुआ था, भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चल रहा था रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत हरीश नारायण के नाम रहे मिडलैंड सुगर माता जी खातिर, नतराज राम को नोवेल फ्रांसे और देवेन नदी वाला रहे वैनकूवर कनाडा। गीत सब संगत यालो के नाम।

जिंदगी में काम के बहुत ही महत्व हो, चाहे कोनो भी काम हो, काम छोटा ना बड़ा रहेला, काम करब त आमदनी मिलेला, पैसा आवेला हाथ में, और जब पैसा आवेला तो सब अपन परिवार के देखभाल करे, अपनो देखभाल करे, त काम करवा रे काम करवा। बहुत ही प्यारा सन गाना और गीत हम चाहते इस वीरेन के नाम। हाय वीरेन, गीत और कहते तो और घरोली और दुगो लड़का खातिर, और साथ में है गीत चली सैंतोबे SSS कॉलेज के सब अध्यापक, नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर, वहाँ के लड़का लोग खातिर बहुत बहुत प्यार से, स्पेशली मिस दीना टीना, मिस केट और मिस रोशनी, मिस बानू के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। एंड विदाउट फॉरगेटिंग मिस्टर व्यापन, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर ओसाई, मिस्टर अपाया और सब अपाया के परिवार के नाम, अपाया के और बेटा का तिर भी ये चलावत है जा, काम करवा रे काम करवा।

तू ही हमार जान, तू ही जमाल कुजू। रात के पौने 11 बजे था और एमबीसी रेडियो पर सुना तो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चल रहा है रोज की लेंदी से लेके दिमास ले रात के 9 से 11 बजे ले केवल एमबीसी रेडियो पर। और हमी के साथ देखा थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत बुझावल हम बुझीला रामभा राम तोहल के गावल गीत है और है गीत चली इस सब संगतियारों के नाम से हमके साथ जुड़ल हवन जा और पाए से वन नंदा शोभा हवन बॉम्बे मुझसे आशा जानू कोतेज से सब परिवार के नाम और है गीत चली हेमा के रस्य घर वाला विजय खतीर और तीन गोले का बा और बेशक है गीत चलाते से जितना कोई भी रात के काम करता पुलिस विभाग में हवन से फायर सर्विसेज में जितना पंपिये लोग एसएमएफ लोग पुलिस लोग काम करे था अभी रात के वक्त सबकी सुरक्षा खातिर तक हसम खास है गीत लोग के नाम जितना ड्राइवर दोस्त भी सुना था। और बेशक जैसे कि जहाँ तो अभी कर्फ्यू लगल बा उनके देश में तो बहुत बहुत तालीबी नहीं करिया लो तो में कहे कि खाली सर्विस एसेंशियल से की ट्रावेसे हुई जैसे ला पुलिस बा डॉक्टर लोग बा नर्सिंग ऑफिसर लोग बा मीडिया बा ये लोग सके रात के थी करे पर बाकी सब लोग के जहाँ घर में रह के कल फजीर के 5 बजे ले ठीक बा। और बेशक बुझावल हम बुझीला रंभा राम तोहल गावल गीत है और एक ही चलते सब भोजपुरी लवर्स के नाम जितना कोई भोजपुरी गीत कुछ सुने के खासम खास सुनन चिटंकी गीत और खतील इसका से तो और बेटी तो दमादों के नाम सब चिटंकी परिवार के नाम गीत चलता और है गीत खसम खास मिचल अब सर ईश्वर शोभन की ओर से कर पत्नी और कर लड़का और सब शोभन परिवार के नाम और है गीत चलावत ईसा जितना कोई खुशिया भोजपुरी गीत सुने के और लोग के नाम बुझावल हम बुझीला

संगत्यालो कोयल बिना बगिया न बोले दिनु वीरमाला देवी वीरमाला दिनु के गावल हरी गीत के संगे भोज हुई तरह का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से भी हबीर के साथ दे रहा जा बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 11 बजे में 4 मिनट बाकी भाई 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए और 11 बजे सुन बजा निर्मलि से प्रोग्राम सुनहरी पल और फिर रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। जाए से पहले बता दे रहा जा कि समय मॉरिशस में कर्फ्यू लागू कल बा और कर्फ्यू चली कल फजर के 5 बजे तो घर में से नहीं निकल लिया 5 बजे से पहले फजर के अपन घरों में रही या 5 बजे के बाद फजर के सकब अपन घर से निकले तो ऐसे शांतिपूर्वक हमने के देश शांति में रही अमन में रही हमने के देश में सब अच्छा काम हो स्वर्ग देशन देश इस देश के हमने के जहाँ सब कोई की रक्षा करे की सब कोई की परम धर्म है अपन देश के रक्षा करे की तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करब सर कि जो 9 दिन और 9 रात के पूजा हुआ था सबके शक्ति दे और ये हमने के देश के कल्याण ही कल्याण हो। जय माता दी। हमने की अर्तुल की मुलाकात हुई अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे MBC रेडियो मॉरिशस पर तो और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सब करके प्यार भरा नमस्ते। जय माता दी। नमस्ते बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

नमस्कार, आप जुट चुके हो सुनहरे पल के साथ और मैं हूं नीलमणि। जिंदगी कभी हमें हंसाती है, कभी आजमाती है और कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है और हर रात अपने दिन को याद करने का वक्त देती है। आज की रात कुछ ऐसे नगमों के नाम जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को जीना भी एक कला है।

हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती है। मेहनत के बाद भी नतीजा देर से मिलता है और कभी अपने ही इरादों पर सवाल उठने लगते हैं। ऐसे वक्त में एक बात याद रखिए, हर मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती है। कभी कभी बस एक छोटा सा कदम और थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो मन में नई उम्मीद जगाए।

खुशी के लिए हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार क्यों करें? रात की चाय, परिवार के साथ दो पल्ला, किसी पुराने दोस्त का फोन या पसंदीदा गाने की धुन, कभी कभी इतना ही काफी होता है। जिंदगी की भाग दौड़ हमें अक्सर उन छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने में मजबूर कर देती है जो हमारे आस पास होती है, हम उसे भूल जाते हैं। तो आज अपने दिन की एक ऐसी बात याद कीजिए जिसने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई।

0: कुछ लोग कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान के शौक बदल जाते हैं,
1: लेकिन संगीत का जादू तो देखिए, सालों पुराना गाना भी आज के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं।
0: उम्र चाहे जो हो, दिल में सीखने की इच्छा, मुस्कुराने की वजह और सपने देखने का हौसला रहना चाहिए। आखिर जिंदगी का हर दौर अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, तो क्यों ना आज रात एक दिलकश गीत के साथ मुस्कुरा ही देते हैं।

आज की रात का पैगाम बस इतना सा है, जिंदगी को सिर्फ गुजारिए मत, उसे महसूस भी कीजिए। जो बीत गया है उससे सीखते हैं, जो आसपास है उसकी कदर करते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद रखिए। हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका है। मैं हूं नलमनी, आपके साथ थी सुनहरे पल में। तो अपनी जिंदगी के नगमे गाते रहिए और सुकून भरी नींद लीजिए। शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए जापानी।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ए भाई, ए भाई, जरा देख।

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे।